मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 अगस्त 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को

0: को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

0: अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुरेश सम्राट का ये आलेख। विषय है सकारात्मक सोच।
1: सकारात्मक सोच सदैव रचनात्मक दिशा का अनुगामी होता है। ऐसा सोच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे कार्यों के प्रति सम्मान और प्रसन्नता का भाव रहता है। स्वार्थ और दूसरों के अहित की बात तो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती। अनुचित समझौतों से वह दूर ही रहता है। किसी की समृद्धि, सफलता या विजय उसे उल्लसित ही करती है। जलन, ईर्ष्या जैसी बुराइयाँ उसमें किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर नहीं उपजती, वरन वह उसे भी सद्भाव और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है। सच कहा जाए तो सकारात्मक सोच मानवीय दृष्टिकोण के सबसे पावन स्वरूप का जनक होता है। सकारात्मक सोच और चिंतन वाला मनुष्य कर्मयोगी तो होता ही है। वह अपने अमूल्य समय, अपने महत्वपूर्ण प्रयत्न और अपनी सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के हित के लिए करने में कोई संकोच नहीं करता। किसी की उचित अपेक्षा से उसे कष्ट का नहीं, आनंद का अनुभव होता है। दूसरों के कष्टों और समस्याओं को समझने, उन्हें सुलझाने में उसे खुशी मिलती है। उनके सुख दुख का भागीदार बनना, हताशा में उन्हें प्रोत्साहित करना और विपरीत परिस्थितियों में उन्हें धैर्य का संबल प्रदान करना वह अपना निस्वार्थ दायित्व समझता है। दूसरे की नाकामयाबी पर वह हंसता नहीं, असफल को वह ही नहीं समझता, बल्कि और गहराई से समझने की कोशिश करके वह उसे वास्तविकता से साक्षात्कार कराने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी मनुष्य जिसकी सोच सकारात्मक होती है स्वयं अपने को महान या बड़ा समझने का भ्रम कभी नहीं पालता। अहम का अहंकार कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही विचार सही है, इस प्रकार के भ्रम और दुराग्रह उस

0: के मन में कभी नहीं आते। अपनी भूल को स्वीकार करने में उसे संकोच नहीं होता। यदि उसका मत या विचार सही निकलता है तो वह इसके लिए न तो स्वयं की तारीफ करता है और न ही तारीफ सुनने की अपेक्षा रखता है। व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने पड़ते होंगे, ऐसी बात नहीं है। यह सब तो स्वस्थ चित्त और चिंतन स्वतः ही यंत्र की भांति संचालित करता रहता है। उसमें स्वार्थी होने या श्रेष्ठता की ग्रंथि पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसमें संवेदना और दया भाव जैसे गुणों का आ जाना एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में ही संभव हो जाता है। दूसरे के दुर्व्यवहार के जवाब में भी भलाई का व्यवहार करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। वह असहमति से क्रोधित नहीं होता, बल्कि उस पर विचार करना ही ज़्यादा पसंद करता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को लोकप्रियता अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि सामाजिक होकर जीना उसे अच्छा लगता है। लोगों से मिलने वाले अपनत्व के कारण उसका आत्मसंतोष और बढ़ जाता है। अधिक से अधिक लोगों से मिलने, उन्हें समझने और अपनी सेवाएं देने में वह सोच विचार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रवंचना जैसी सर्वव्यापी बुराई से भी दूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक सोच व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम अपने सकारात्मक सोच पर दृढ़ता के साथ अडिग रहेंगे तो कुंठा और असंतोष जैसी प्रवृत्तियां हमें छू तक नहीं पाएंगी। वस्तुतः सकारात्मक सोच स्वयं के जीवन को तो स्फूर्त बनाए ही रखता है, दूसरों के जीवन को भी सहज सरस बनाने की प्रेरणा देता रहता है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश सम्राट का ये आलेख। विषय था सकारात्मक सोच। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। जानकारी दे रही हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख फसल है। भिंडी की फसल में अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन सभी बीमारियों में पीत सिरा और खर्रा रोग बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि फसल पर पीत सिरा मोजक वायरस का आक्रमण फसल बुवाई के 35 से 40 दिन के अंदर हो जाता है तो फसल की पैदावार बहुत कम हो जाती है। पीत सिरा मोजक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की सिराएं कुछ मोटी, पीली और चमकीली हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां पीली और छोटी हो जाती हैं, बाद में सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और भिंडी विकृत होकर कड़ी, छोटी और हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिससे खाने योग्य नहीं रहती है और बाजार में बेचने पर कीमत नहीं के बराबर मिलती है। भिंडी की फसल में पीत सिरा मोजक रोग का संचरण बेमेसिया टेविकाई नामक तंबाकू की सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ये मक्खियां भिंडी के पौधों पर से ही अपना पोषण प्राप्त करती रहती हैं और प्रजनन वहीं पर बढ़वार होती रहती है। इस प्रकार रोगी पौधों से रोग के विषाणुओं को स्वस्थ पौधों तक पहुंचाती हैं। जब ये फसलें खेत में नहीं रहती हैं, जब ये मक्खियां कुछ जंगली किस्म के पौधों पर निष्क्रिय रूप में रहकर अपना जीवन निर्वाह करती रहती हैं, फसल में जिन पौधों पर पीत सिरा मोजक रोग के लक्षण दिखाई दें उन्हें तत्काल उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें। फसल बुवाई के 35 दिनों तक पीत सिरा मोजक रोग के प्रति अधिक सजग रहें। खेत के आसपास उगे सभी खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करते रहें और रोग रोधी

0: किस्में उगाएं, जैसे पंजाब सात, परवड़ी, दीप मालका, क्रांति जैसी प्रजातियों का चयन करके बुवाई करनी चाहिए। फसल को सफेद मक्खी से बचाव के लिए मेटासिस्टा की 3 लीटर मात्रा को 1500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। पहला छिड़काव फसल बुवाई के 25 दिन बाद अवश्य करें। इसी तरह फसल पर 5-6 छिड़काव करके सफेद मक्खी की संख्या में कमी संभव है, जिससे रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान का प्रयोग भी काफी लाभदायक है। इसी तरह फफूंद जनित खर्रा रोग होता है, इस बीमारी का प्रभाव पत्तियों, कोमल टहनियों और फलों पर होता है। रोग की आरंभिक अवस्था में रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों के निचले भागों पर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। यह चूर्ण या पाउडर आरंभ में छोटे छोटे धब्बों के रूप में उत्पन्न होता है और बाद में पूरी की पूरी पत्ती को ढक लेता है। अधिक रोग संक्रमण की स्थिति में पत्तियों पर वक्रता आ जाती है, अंत में पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर गिर जाती हैं। खर्रा रोग की प्रभावशाली और सस्ती रोकथाम के लिए सल्फेक्स या बेटालेस की आवश्यक मात्रा घोल बनाकर हर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अच्छे परिणाम के लिए पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत करें, जिससे फसल में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: बेटियां माता पिता का ही नहीं देश का नाम भी रोशन करती हैं। उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही देश की मांग है आज।
2: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारी इत्येतस्य अभियानस्य शतसप्ताह समापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+ युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मकसामाजिकपरिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रीडा क्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीय यूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे, प्राकृतिक सम्पदः संवर्धने, भारतीय कला वस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मूवर्यया सह शिष्टाचारोपसङ्गमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सः नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21,99,00,000,00,000 वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारम् उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28,29,00,000,00 अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,28,10,00,00,000 अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,08,00,00,000 प्राप्नोत्। पश्चिमबङ्गालराज्यं 66,87,00,00,000 महाराष्ट्रराज्यं च 22,07,00,00,000 अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5,000-मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट एफ 57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तुविज्ञानविभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिमबंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव अख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाता है। 7:20 से 8:00 के बीच हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 10:05 से 11:00 के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। सुबह 8:30 आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे ज्ञान सिंह शाक्य और उनके साथी। लोक संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 1:30 पर। सुनिए इस घंटे की खास खबरें, इसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर और दिन में 12:58, साथ ही 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9:00 इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना समाचार और नगमों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सुबह 9:30 बजे सुनिए सिंधी कार्यक्रम, इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। साथ ही सुबह 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से सुनिए जिले की चिट्ठी।

11 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारी शाम की सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। एक बजे सुनिए महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। दिन में 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। साथ ही दोपहर 2:30 पर सुनिए बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान।

5 बजे युवाणी कार्यक्रम और 6 बजे सुनिए फिल्म संगीत आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सात बजकर 20 मिनट पर हमारी केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा के विषय होंगे माँ का दूध बच्चे का सर्वोत्तम आहार, साथ ही मंगल दिवस की अवधारणा और इसके साथ ही भेंट वार्ता में सुनिए माँ का दूध अमृत समान।

0: कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को भी मिले रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्य प्रदेश के एम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महाअभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रदेश का सबसे आदर्श मॉडल जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
1: जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दृष्टि से इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बाद जबलपुर मेट्रोपॉलिटन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे एक साल के अंदर हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ाएं। साथ साथ भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर, यहाँ आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है, फर्नीचर बनाने वाले कुछ अच्छे कारीगर लोग हैं, इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर भी जबलपुर में बनाया जाएगा।
0: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रणाली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यार्थी केंद्रित, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित प्रवेश व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 31 जुलाई की स्थिति में 2001 महाविद्यालयों में 7,51,123 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिनमें 6,60,981 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन

0: किया गया तथा 5,24,048 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 65,840 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो 14.4% की उल्लेखनीय वृद्धि है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कल देवास में बताया कि देवास जिले के लिए यहां की मिट्टी और मिट्टी में मौजूद तत्व, जलवायु और पानी के साथ अनेक चीजों की उपलब्धता को देखते हुए हमने एक रोडमैप तैयार किया है।
2: भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से यहाँ की मिट्टी में मौजूद तत्व, यहाँ की जलवायु, पानी और बाकी चीज़ों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया, उसका आज प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज, फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी FPOs और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियाँ शुरू हो, उस पर हमने व्यापक पैमाने पर चर्चा की है।
0: प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर, झाबुआ, आगरमालवा, बैतूल और नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कई गतिविधियों का संचालन आरम्भ किया गया। 7 अगस्त तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने तथा शेष पात्र पथ विक्रेताओं तथा इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कल से 15 अगस्त तक विशेष PM स्वनिधि पखवाड़ा शुरू किया गया है। ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगन मॉर्निंग डिवेलो को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में 5,000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के शॉटपुट के F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने रजत पदक और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। जूडो में सागर की यामिनी मौर्य और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई दी है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गायक अशकिशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के ग्राम आंवला से चवली तक 4 लेन किए जाने वाले उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन विषय पर कल एक दिवसीय विशेष

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल कृषि उपज मंडी बड़ोरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मैहर शासकीय संगीत महाविद्यालय में कल मैहर मल्हार संगीत सभा का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को मिले रजत पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज मित्रता दिवस है। वो कहते हैं ना, मित्रता जीवन का वह खूबसूरत रिश्ता है जिसे किसी नाम या स्वार्थ की ज़रूरत नहीं होती। एक सच्चा दोस्त हमारी हंसी में, खुशी में और हमारी खामोशी में छिपा दर्द भी समझ लेता है। वह हमारी गलतियों पर हमें रोकता है और सफलता पर सबसे ज़्यादा खुश होता है। समय बदल जाए, दूरियां बढ़ जाएं, फिर भी सच्ची दोस्ती दिल के करीब रहती है। शायद इसलिए दोस्ती को रिश्तों में सबसे खूबसूरत और बेफिक्र रिश्ता कहा जाता है। किसी ने कहा है, न धन की चाह थी न वैभव का कोई अभिमान था, कृष्ण के लिए सुदामा बस बचपन का प्यारा मित्र महान था। सुदामा मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारिका जब आए, कृष्ण ने प्रेम से गले लगाया, आंखों में आंसू भर आए। यही तो सच्ची मित्रता है, जहां रिश्ते नहीं केवल प्रेम और अपनापन देखा जाता है। गरीबी और अमीरी के बीच कभी उनकी दोस्ती नहीं बदली। सुदामा के बिना कुछ कहे ही श्री कृष्ण ने उनकी परिस्थिति समझ ली और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता सच्ची दोस्ती का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये मित्रता सिखाती है, सच्चा दोस्त परिस्थिति नहीं भावनाएं देखता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत और आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शाहगिर्द। गीत मजरू का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। जो भीड़ में भी पहचान ले आंखों की उदासी, वही दोस्त है जो समझे बिना कहे दिल की बात सारी। जैसा कि हम रामायण में पढ़ते हैं, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता विश्वास और सहयोग पर आधारित थी। दोनों ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया। श्री राम ने सुग्रीव को उसका अधिकार दिलाया और सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता की। यह मित्रता बताती है कि सच्चा मित्र संकट में सबसे आगे खड़ा होता है और सच्चा मित्र वही जो विपत्ति में साथ निभाए। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, गीत गाता चल फिल्म से। बोल और संगीत है रविंद्र जैन के, आवाज़ है जसपाल सिंह की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। श्रोताओं, इतिहास में एक सुंदर मित्रता का उदाहरण हम देखते हैं, वो थी अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री से बढ़कर मित्रता का भी उदाहरण माना जाता है। एक के पास ताज था तो दूजे के पास बुद्धि की लाली। सवाल चाहे कितने कठिन हो, बीरबल हल निकाल लाते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमता और हास्य से अकबर को प्रभावित करते थे। अकबर को बीरबल की समझ और सलाह पर भरोसा था। इन दोनों की कहानियाँ आज भी मित्रता और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता आज भी मिसाल बनकर सुनाई जाती हैं। तो मित्रता के ऊपर फिल्म याराना से अगला गीत, गीत लिखा है अनजान ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, स्वर है किशोर कुमार का। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पापा
1: हम्म,
0: लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।

0: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। इतिहास में मित्रता का एक और सुंदर उदाहरण हम देखते हैं। एक ने सत्य और अहिंसा से जग को राह दिखाई, दूजे ने अपनी लेखनी से मानवता की ज्योत जलाई। विचार अलग थे फिर भी सम्मान का रिश्ता गहरा था, गांधी में महात्मा दिखे टैगोर में गुरुदेव का चेहरा था। दो महान आत्माओं का ये सुंदर संवाद आज भी सिखाता है सम्मान ही मित्रता की बुनियाद। ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच गहरा सम्मान और आत्मीय संबंध था। दोनों के विचार कई विषयों पर अलग थे फिर भी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। उनका संबंध बताता है कि सच्ची मित्रता के लिए हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, विचारों की भिन्नता के बावजूद सम्मान बनाए रखना ही महान मित्रता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे गाया है मन्ना डे ने फिल्म जमीर के लिए। गीत गुलशन बावरा का और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म का ये गीत।

ہم سفر ہمراز ہوں تا قیامت

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। श्रोताओं, इतिहास में एक और ऐसी दोस्ती है कि मौत भी उन्हें जुदा ना कर सकी, देशभक्ति की राह में कोई मुश्किल उन्हें झुका ना सकी। एक के होंठों पर इनकलाब था, दूसरे के दिल में वतन। हंसते हंसते दोनों ने देश पर लुटा दिया अपना जीवन। भगत सुखदेव की दोस्ती आज भी देशभक्ति की मिसाल है। शहीदों की उस यारी को भारत के हर दिल से सलाम है। ऐसा कहते हैं भगत सिंह और सुखदेव क्रांतिकारी आंदोलन के साथी और घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कठिन परिस्थितियों और जेल में भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। उनकी मित्रता देशभक्ति, त्याग और साहस की मिसाल बन गई। इसी दोस्ती के लिए ये अगला गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी का गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है दोस्ताना। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। श्रोताओं, दोस्ती में न कोई शर्त होती है न कोई हिसाब, बस दिल से दिल तक पहुंचता है अपनापन बेहिसाब। जी हाँ, हिंदी सिने जगत के ऐसी ही एक दोस्ती थी दो दिग्गजों के बीच। ऐसा कहते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच लंबे समय तक आत्मीय संबंध रहा। दोनों ने भारतीय फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दोस्ती फिल्मी दुनिया के बदलते दौर की भी गवाह रही। ये रिश्ता बताता है कि सफलता के साथ पुराने संबंधों की अहमियत भी बनी रह सकती है। सच्ची दोस्ती की खूबसूरत बात यही है कि इसमें किसी स्वार्थ की जगह नहीं होती। दो दोस्त एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में साथ खड़े होते हैं। ये रिश्ते हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ चलते हैं। इस गीत में आवाज़ है मन्ना डे और किशोर कुमार की। फिल्म शोले के लिए इसे लिखा है आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मित्रता दिवस विशेष। श्रोताओं, जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, कई बार रास्ते मुश्किलों से भर जाते हैं। ऐसे समय में एक दोस्त का भरोसा हमें दोबारा खड़े होने की हिम्मत देता है। दोस्त हमारी परेशानियां ख़त्म न भी कर पाए तो कम से कम उन्हें बांट ज़रूर लेता है। उसकी एक मुस्कान और कुछ सच्चे शब्द मन का बोझ हल्का कर देते हैं। इसलिए दोस्ती को ज़िंदगी की राह में मिलने वाला सबसे खूबसूरत सहारा कहा जा सकता है। वो कहते हैं ना, थक जाए जब ज़िंदगी की राहों में चलते चलते, दोस्त मिल जाए तो सफ़र आसान लगे हंसते हंसते। तो आज के कार्यक्रम में हम भी चलते चलते आपको ये गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म दोस्ती के लिए इसे स्वर में सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत मजरू का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो चलते चलते सुनते जाइए ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
5: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के

0: लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन

0: से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन चार अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ज्ञान सिंह शाक्य और साथी सदस्य लखपति और सुरेश कुमार के निर्गुण भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ज्ञान सिंह शाक्य और साथियों के स्वर में निर्गुण भजन।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में आज ज्ञान सिंह शाक्य और साथियों के निर्गुण भजन।

यह आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ज्ञान सिंह शाक्य और साथी सदस्यों के स्वर में निर्गुण भजन।

इस भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ज्ञान सिंह शाक्य और साथी सदस्य लखपति और सुरेश कुमार के निर्गुण भजन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय हो गया है इस घंटे की खास खबरों का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। यह परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे अफवाहों से दूर रहें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देवास में बताया कि देवास जिले के लिए यहां की मिट्टी, मिट्टी में मौजूद तत्व, जलवायु और पानी के साथ अनेक चीज़ों की उपलब्धता को देखते हुए एक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्य प्रदेश के एम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ई प्रवेश प्रणाली के माध्यम से इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

0: सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आपकी रेडियो मित्र आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 2 अगस्त 2026। आज के दिन को हम कई रूप से जानते हैं। आज मित्रता दिवस भी है और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती भी है। और इस पूरे हफ्ते को हम विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। इस कार्यक्रम में आपसे इन सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। श्रोताओं, भारत की धरती ने ऐसे अनेक महान वैज्ञानिकों और विचारकों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और कर्म से देश का गौरव बढ़ाया। इन्हीं महान हस्तियों में एक नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को तत्कालीन बंगाल के ररूली कटीपरा गांव में हुआ था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन ज्ञान, शोध और राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा को दुनिया के सामने पहचान दिलाई। उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं माना बल्कि इसे देश और समाज के विकास का माध्यम समझा। उनका योगदान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था, वे स्वदेशी उद्योगों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने भारतीयों को अपने पैरों पर खड़े होने तथा देश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 1892 में उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत की प्रमुख स्वदेशी औषधि एवं रासायनिक कंपनियों में शामिल हुई। साथ ही आचार्य राय एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित की। श्रोताओं, उनका मानना था कि देश की प्रगति तभी संभव है जब शिक्षा और विज्ञान का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में किया जाए। उन्होंने विज्ञान को आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनाने का सपना देखा और अपने कर्मों से उस सपने को दिशा दी। आज उनकी जयंती पर हम इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके जीवन से ये प्रेरणा लेते हैं कि ज्ञान के साथ कर्म, विज्ञान के साथ मानवता और सफलता के साथ राष्ट्र सेवा को हमेशा महत्व देना चाहिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव ये प्रेरणा देता रहेगा कि समर्पण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और देश प्रेम के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में आपसे चर्चाएं और भी करेंगे, उससे पहले लेते हैं ये अल्प विराम।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के इतिहास में मध्य प्रदेश की धरती का विशेष योगदान रहा है। इस धरती ने अनेक ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने अपने संघर्ष, त्याग, नेतृत्व और जनसेवा से देश और समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और राजनेता थे पंडित रविशंकर शुक्ल। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायी गाथा है। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में सागर, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभ से ही उनमें देश और समाज के प्रति गहरी संवेदना थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद कानून के क्षेत्र में अपना जीवन आरंभ किया, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित किया। उस समय भारत अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की भावना लगातार मजबूत हो रही थी। पंडित रविशंकर शुक्ल ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन जागरण किया और आम लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया। उनका जीवन केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, वे समाज में शिक्षा, जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके जागरूक नागरिकों में होती है। इसलिए उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के बावजूद उनका राष्ट्र प्रेम और संघर्ष का जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की अपेक्षा देश हित को प्राथमिकता दी। यही त्याग और समर्पण उन्हें एक सच्चा जन नेता बनाता है। आज़ादी के बाद भी पंडित रविशंकर शुक्ल ने राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल में शिक्षा, प्रशासन, कृषि, सिंचाई और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक विषयों पर ध्यान दिया गया। वे एक ऐसे मध्य प्रदेश की कल्पना करते थे जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। पंडित रविशंकर शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे

राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनके लिए जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए काम करना ही राजनीति का वास्तविक उद्देश्य था।

स्वतंत्रता के पहले उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के निर्माण और विकास में योगदान दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल का जीवन नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायी है। आज जब देश तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है, तब उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनकी जयंती हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करने का अवसर देती है। आज हम जिस स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और संघर्ष छिपा हुआ है। पंडित रविशंकर शुक्ल भी उन्हीं महान राष्ट्रभक्तों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देश और समाज के लिए समर्पित किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्र प्रेम, जनसेवा, ईमानदारी, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता जैसे उनके मूल्यों को आगे बढ़ाना ही सच्ची उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि देश की सेवा केवल शब्दों से नहीं बल्कि समर्पित कर्मों से होती है। उनका संघर्ष, उनका नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम में आपसे चर्चाएं और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

एक बार फिर आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को शिशु के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और समाज में स्तनपान को लेकर सही जानकारी, साथ ही साथ सकारात्मक वातावरण बनाना है। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का दिया हुआ सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें बच्चे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, एंटीबॉडीज और अन्य महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं जो उसे अनेक संक्रमणों से बचाने में सहायता करते हैं। जन्म के बाद आने वाला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसे अक्सर बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने वाले तत्व भरपूर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ शिशु को जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने और लगभग 6 महीने तक केवल माँ का दूध देने की सलाह देते हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को उचित पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जा सकता है। स्तनपान केवल बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि माँ के लिए भी लाभदायक है। ये प्रसव के बाद माँ के शरीर को सामान्य होने में सहायता करता है और माँ बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। स्तनपान के दौरान बच्चे को माँ का स्पर्श, सुरक्षा और अपनापन मिलता है, जिससे उसके भावनात्मक विकास में भी मदद मिलती है। ये सप्ताह हमें संदेश देता है कि स्तनपान केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसे उसके बाद पर्याप्त आराम मिले, पौष्टिक भोजन मिले, भावनात्मक रूप से उसे सहयोग मिले और साथ ही साथ सही जानकारी मिले, एक ऐसी डॉक्टर मिले जो उसके सही गलत को उसे समझा पाए। परिवार के सदस्यों और समाज को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और सहयोगी दृष्टिकोण रखना चाहिए। आज के समय में कामकाजी माताओं के लिए भी स्तनपान को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। कार्यस्थलों पर उचित मातृत्व अवकाश, स्तनपान या उचित सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जागरूकता फैलाकर हम माताओं को बिना झिझक अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंततः माँ का दूध बच्चे के स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। विश्व स्तनपान सप्ताह हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण केवल परिवार की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। सही जानकारी, सहयोग, संवेदनशीलता के माध्यम से हम हर नवजन्मे बच्चे को जीवन की बेहतर और स्वस्थ शुरुआत दे सकते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है और ये अमृत हमारे सहयोग से बच्चे के भावनात्मक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ हमें

संतान वाली माओं के प्रति भी संवेदनशील नज़रिया रखना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य और खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए। कार्यक्रम में बातें अभी और भी हैं, उससे पहले रुक कर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोताओं, आज फ्रेंडशिप डे भी है, यानी मित्रता दिवस। यह हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है और इस साल यानी 2026 में ये आज 2 अगस्त रविवार को है। क्या आपको पता है मित्रता दिवस की शुरुआत कैसे हुई?

हुई। मित्रता दिवस मनाने की शुरुआत का विचार 20वीं सदी की शुरुआत में सामने आया। 1930 में अमेरिकी व्यवसायी जॉयस हॉल ने इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश की थी। बाद में ये विचार कई देशों में अलग अलग रूपों में फैलता गया। 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र ने की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप घोषित किया, जिसका उद्देश्य देश, संस्कृतियों और लोगों के बीच दोस्ती और शांति को बढ़ावा देना था। भारत सहित कई देशों में अगस्त के पहले रविवार को पारंपरिक रूप से फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। वो कहते हैं ना, मित्रता केवल साथ हंसने बोलने का नाम नहीं, बल्कि वह रिश्ता है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहता है। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, पर दोस्त वही है जो हाथ थाम ले कठिन डगर में। खुशियों में तो हर कोई अपना बन जाता है, सच्चा मित्र वही है जो गम में भी मुस्कुराता है। और इसी के साथ चलते चलते कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सबके लिए।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण तवां सभिनी जे पसंदीदा हिन कार्यक्रम में मां मनोज सोनी पंजवाणी पारां तवां सभिनी खे सिक भरी नमस्ते। दोस्तों अगस्त महीनो चालू थी वियो आहे ऐं अगस्त माना

यारनि जो महीनो, दोस्तनि जो महीनो। अगस्त महीने जो पहिरियों आर्तवार फ्रेंडशिप डे जे रूप में मल्हाईंदा आहियूं, जेको अॼु आहे। ऐं साथियो, इन फ्रेंडशिप डे ते भॻवान दर इहा ई प्रार्थना आहे त तव्हांजी ऐं असांजी हीअ सुहिणी यारी ईअं ई बणी रहे, असांजो प्रेम ईअं ई बणियो रहे। अगस्त सां गॾु ही शुरू थियो आहे सावण जो महीनो, ऐं सावण महीनो चवायो वेंदो आहे भॻवानु भोले भंडारी, भॻवानु शिव शंकर जो। त अचो त अॼु जे कार्यक्रम जी शुरूआति कयूं था भॻवानु शंकर जे हिन भॼन सां।

0: बोल शंकर भगवान की जय।
1: भगवान शंकर जो ही भजन गायो ऐं लिखियो हो आज़ाद सूफ़ी संगीत जो राम चरण दास जो। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॼाणुनि पासे ऐं अॼु जी जेका ॼाण आहे सा आहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हर साल 7 अगस्त ते इहो ॾींहुं असां मल्हाईंदा आहियूं। इहो ॾींहुं मुल्क जे हथकरघा बुनकर समुदाय खे सम्मानित करण लाइ स्वदेशी विरासत खे संभालण ऐं राष्ट्र जे विकास में इन उद्योग जे योगदान खे ॾेखारणु इन ॾींहं जो ख़ासि मक़सदु आहे। साथियो, हिन ॾींहं जे ऐतिहासिक महत्व ते नज़र विझूं त सन 1905 7 अगस्त ते कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जी शुरूआत कई वई हुई, जंहिंमें ब्रिटिश शयुनि जो बहिष्कार करे मुल्क में ठहियल हथकरघा ऐं स्वदेशी उद्योगनि खे वाधारो ॾिनो वियो हो। इन ही ऐतिहासिक घटना जी याद में भारत सरकार सन 2015 में 7 अगस्त के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कई। इन जो मुख्य उद्देश्य बुनकरन के सम्मान दियण, उनन जो आर्थिक विकास करण, इन उद्योग से जुड़ियल जेके महिलाओं आहिनि, माताओं भेनरूं आहिनि, उन्हनि

के सशक्तिकरण करण आहे। इहा त हुई ॼाण 7 अगस्त जी। इन खां पोइ 8 अगस्त, इन जो बि पंहिंजो ई इतिहासिक महत्व आहे। 8 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधीअ जे नेतृत्व में शुरू थियो हो भारत छोड़ो आंदोलन। हिन जो ख़ासि मक़सदु भारत में ब्रिटिश शासन खे तुरंत ख़तमु करणु। 8 अगस्त सन 1942 बॉम्बे जे ग्वालिया टैंक मैदान, जंहिंखे अगस्त क्रांति मैदान बि चवंदा आहियूं, इतां खां इन जी शुरूआति थी, जंहिंमें महात्मा गांधी पारां करो या मरो जो नारो ॾिनो वियो ऐं भारत छोड़ो जो नारो ॾिनो समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली। क्रिप्स मिशन जी विफलता ऐं द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयनि जी सहमतीअ जे बिना ही उन्हनि खे हिन युद्ध में घसीटण जे करे इन आंदोलन जी शुरूआत कई वई। साथियो, 8 अगस्त 1942 ते आंदोलन जी घोषणा कई वई ऐं अॻिले ही ॾींहुं 9 अगस्त 1942 ते महात्मा गांधी ऐं उन सां गॾु जेके बि वॾा नेता हुआ उन्हनि सभिनी जी गिरफ़्तारी कई वई। पर उन खां पोइ बि इहो आंदोलन पंहिंजे स्तर ते हलंदो रहियो, बिना नेतृत्व जे बि इहो आंदोलन पंहिंजो कमु कंदो रहियो। इहा इन आंदोलन जी हिकु ख़ासियत हुई। सतियो, ॻाल्हि पई हले सावण जी, त अचो सावण जी हिन मस्त बहार में ॿुधूं था मस्तीअ सां झूमियल ही गीत।

0: ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे समय आहे अॼु जी वार्ता जो, जंहिंजो मौज़ू आहे पर्यावरण संरक्षण अॼु जी ज़रूरत। ऐं अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में वार्ताकार आहिनि भारती ठाकुर जी। अचो त ॿुधूं था भारती ठाकुर जी खां अॼु जी वार्ता।
1: जय झूलेलाल साथियो, असांजी वार्ता जो अॼु जो विषय आहे पर्यावरण संरक्षण अॼु जी ज़रूरत। अॼु जे वक़्त में पर्यावरण संरक्षण हिकु वॾो मुद्दो आहे। असांजे ग्रहनि जी स्थिति ॾींहों को ॾींहुं ख़राबु थींदी पई थी वञे, जंहिंजी ज़िमेदार आहिनि असांजी आदतूं ऐं असांजो व्यवहार। वधंदड़ प्रदूषण, वणनि जी कटाई ऐं जलवायु परिवर्तन, जीअं तापमान जो वधण, सुनामी, गोड ऐं सुक, धरतीअ जे अस्तित्व जे लाइ ख़तरो बणी चुका आहिनि। स्वच्छ हवा, पाणी ऐं जलवायु परिवर्तन जे दुष्परिणामनि सां बचण लाइ वृक्षारोपण करणु ऐं प्लास्टिक जो उपयोगु बंदि करणु तमामु ज़रूरी आहे। पर्यावरण संरक्षण जी असांखे छा ज़रूरत आहे, इहो ज़रूरी छो आहे, इन जी ॼाण हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। पहिरियों, असांजी सिहत सुठी रहे, असां स्वस्थ रहूं, जंहिंजे लाइ हवा पाणीअ जो शुद्ध स्वच्छ हुजणु ज़रूरी आहे। प्रदूषित हवा ऐं ख़राब पाणी असांजे शरीर में गंभीर नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, छो त पाणीअ सां ई असां रोज़मर्रा जा कम कंदा आहियूं, जीअं रोटी पचाइण, साफ़ सफ़ाई ऐं पीअण जे लाइ पाणीअ जो साफ़ हुजणु ज़रूरी आहे। असां पाणीअ खां सिवा हिन जीवन जी कल्पना बि नथा करे सघूं। माना पर्यावरण जो संरक्षण असांजे स्वास्थ्य जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। ॿियो आहे जलवायु परिवर्तन, माना क्लाइमेट चेंज। वधंदड़ तापमान खे रोकणु, ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं असमय प्राकृतिक आपदाउनि खे रोकण जे लाइ बि हिन पृथ्वीअ जो संरक्षण ज़रूरी आहे। टियों आहे जैविक विविधता जो संरक्षण, माना पेड़ पौधा ऐं वन्य जीवन खे लुप्त थियण खां बचाइणो आहे त असांखे प्रकृतिअ जी रक्षा करणु ज़रूरी आहे। चौथों आहे संसाधन जी सुरक्षा, पाणी, जंगल ऐं खनिज जहिड़े प्राकृतिक संसाधननि जो सही उपयोग सुनिश्चित करण जे लाइ बि पर्यावरण संरक्षण ज़रूरी आहे। साथियो, पर्यावरण हिकु अहिड़ी चादर आहे जेका असां खां ऐं असां उन खां जुड़ियल आहियूं, ऐं असां चाहियूं न त बि इन खां अलॻि न थी सघंदासीं। प्रकृति ऐं पर्यावरण हिकु ॿिए जो अभिन्न हिसो आहिनि। को बि माण्हू या वस्तु, चाहे हूअ सजीव हुजे या निर्जीव, पर्यावरण जे अंतर्गत ही ईंदा आहिनि। पर्यावरण सां असांखे तमामु कुझु मिलंदो आहे, पर उन जे बदिले में असां छा पैदा कयूं? असां पंहिंजी स्वार्थ सिद्धीअ जे लाइ हिन पर्यावरण ऐं इन जी अमूल्य संपदा जो दुरुपयोग करे रहिया आहियूं। पर्यावरण माना जंहिं वातावरण में असां रहंदा आहियूं, असांजी आसे पासे में मौजूदु हर हिकु शइ, जीव जंतु, पखी, पेड़ पौधा, सभिनीनि खां मिली करे पर्यावरण जी रचना थींदी आहे। असां सभिनीनि जो हिन पर्यावरण सां मज़बूत रिश्तो आहे ऐं हमेशा रहंदो। जॾहिं असां प्रकृतिअ जी सूंह खे ॾिसंदा आहियूं त दिलि में ख़ुशी ऐं उत्साह जो संचार थियणु लॻंदो आहे। हवाउनि में झूलंदड़ वण, आसमान में चहचहाईंदा हुआ पशु पखी, जंगल में डोणूं पाईंदा जानवर, समुंड में ईंदी लहरूं, कल कल कंदियूं नदियूं असांजे अंदरि हिकु सुखद अहसास कराईंदा आहिनि, जेको हिन प्रकृतिअ खां सवाइ असांखे कोई न ॾेई सघंदो। तॾहिं बि अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त माण्हू अॼु बि हिन जो महत्व कान समुझी सघिया आहिनि ऐं इन खे नुक़सान पहुचाए सर्वनाश खे नींड ॾेई रहिया आहिनि। अॼु असां प्रगतीअ जे नाले सां नया नया आविष्कार त करे रहिया आहियूं, वणनि ऐं पहाड़नि खे कटे होटल्स, फैक्ट्री ऐं वॾी वॾी बिल्डिंगूं ठाहे रहिया आहियूं। असां

सभिनीनि खे पर्यावरण ऐं प्रकृतिअ जे संरक्षण जे लाइ जागरूक थियणो पवंदो, न त हिन प्रकृतिअ सां गॾु सॼी मानव जातीअ जो विनाश थी वेंदो। माण्हू गांवनि खां शहर जे पासे पलायन करणु लॻा, वणनि ऐं जंगलनि जो कटणु शुरू थी वियो। माण्हू अॼु जीव जंतुनि खे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ मारणु लॻा आहिनि, जंहिंजे करे चारों तरफ़ प्रदूषण वधणु लॻो आहे, जंहिं सां पर्यावरण खे तमामु नुक़सान पहुचणु लॻो। जंहिं प्रकृतिअ असांखे आसरो ॾिनो, इन्हीअ खे नष्ट करणु लॻा आहियूं असां, जंहिंजे करे प्रकृतिअ जो संतुलन बिगड़ंदो वियो। प्राचीन काल खां ई पर्यावरण जो ॾाढो महत्व रहियो आहे। असुल में प्रकृतिअ जो संरक्षण ही उन जी पूजा आहे। असांजे भारत देश में पर्वत, नदियूं, हवा, आग, ग्रह नक्षत्र, पेड़ पौधा, इन्हनि सभिनीनि खे मानवीय संबंधनि सां जोड़ियो वियो आहे। वणनि खे संतान स्वरूप ऐं नदियुनि खे माता स्वरूप में पूजियो वेंदो आहे। अॼु असां पर्यावरण संरक्षण जे महत्व खे नथा समझूं, जंहिं सां मानव सभ्यता जो अंत परे कान रहियो आहे। हाणे असां वीचार कयूं त पर्यावरण संरक्षण जा उपाय छा थी सघंदा आहिनि ऐं असां सभु मिली करे हिन पर्यावरण ऐं धरती माता जी रक्षा कीअं करे सघंदासीं। सभिनीनि खां पहिरीं पर्यावरण संरक्षण जे लाइ हिन पृथ्वीअ खे प्रदूषण मुक्त करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जे करे प्रदूषण वधंदो थो वञे, जंहिंजे करे जनसंख्या वृद्धिअ ते नियंत्रण करणु ज़रूरी आहे। ओजोन परत जो क्षरण हुजण सां धरतीअ जो तापमान वधंदो पए थो वञे, ध्रुवनि ते ग्लेशियर्स पिघलंदा वेठा वञनि। माना हिन जो संरक्षण असांजी नैतिक ज़िम्मेदारी बि आहे। प्रदूषण जा मुख्य रूप सां चार प्रकार आहिनि। पहिरियों वायु प्रदूषण, ॿियो जल प्रदूषण, टियों ध्वनि प्रदूषण ऐं चौथों आहे रासायनिक प्रदूषण। हवा में अलॻि अलॻि गैस हिक सही मात्रा में हूंदी आहिनि। इंसान ऐं जानवर ऑक्सीजन वठंदा आहिनि ऐं कार्बन डाईऑक्साइड छॾींदा आहिनि। सावा वण उस में कार्बन डाईऑक्साइड वठंदा आहिनि ऐं ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि, जंहिंसां हवा जो संतुलन बणियो रहंदो आहे। पर असां इंसान वणनि खे कटे, गाॾियूं हलाए ऐं कारखाना लॻाए हवा जे संतुलन खे बिगाड़े रहिया आहियूं, जंहिंसां हवा ख़राब थी वेंदी आहे ऐं इहो ई वायु प्रदूषण चवाराईंदो आहे। ॿियो आहे जलवायु प्रदूषण। पाणी सभिनी माण्हुनि जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। पौधा बि पाणीअ सां ई पंहिंजो भोजन वठंदा आहिनि। पाणीअ में कुझु खनिज ऐं गैस मिलियल हूंदियूं आहिनि, जेके ज़रूरी बि हूंदियूं आहिनि। पर जॾहिं पाणीअ में किन कचिरो ऐं रसायन कठो थी वेंदो आहे, त उहो पाणी असांजे लाइ नुक़सानदाई थी पवंदो आहे, जंहिंखे जल प्रदूषण चइबो आहे। टियों आहे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अॼु जे युग में ॾाढी वॾी परेशानी थी वई आहे। गाॾियुनि जो धूओ, ट्रेन, हवाई जहाज़, कारखाननि जी मशीनूं ऐं लाउड स्पीकर ॾाढी तेज़ आवाज़ कंदा आहिनि। तेज़ आवाज़ सां कननि जे ॿुधण जी शक्ति घटिजंदी वेंदी आहे, कमु करण जी क्षमता बि घटि थी वेंदी आहे ऐं निंड बि ख़राबु थींदी आहे, जंहिंसां कई बीमारियूं घर करे वेंदी आहिनि ऐं मानसिक परेशानियूं घेरे वठंदियूं आहिनि। इहो ई ध्वनि प्रदूषण चवाराईंदो आहे। चौथों आहे रासायनिक प्रदूषण। कारखाननि मां निकिरण वारो ख़राबु पाणी, खेतनि में इस्तेमालु थियण वारा कीटनाशक दवाऊं ऐं रासायनिक खादूं बि प्रदूषण फैलाईंदा आहिनि। इहे पदार्थ पाणीअ सां गॾु वही करे नदियुनि, तालाबनि ऐं समुंड में पहुची वेंदा आहिनि, जंहिंसां इंसाननि, जानवरनि ऐं पाणीअ में रहण वारे जीवन खे तमामु वधीक नुक़सानु थींदो आहे, जेको रासायनिक प्रदूषण चवाराईंदो आहे। साथियो, हिन वार्ता जो सार इहो आहे कि असांखे मिली करे इन प्रकृति ऐं पृथ्वीअ जी रक्षा करणु ज़रूरी आहे ऐं सरकार जी कोशिशुनि सां गॾोगॾु असांजी बि हीअ ज़िमेदारी आहे कि असां वृक्षारोपण कयूं, नदियूं, तालाबनि खे साफ़ स्वच्छ रखूं, प्लास्टिक जो उपयोगु बंदि करे पेपर बैग्स जो इस्तेमालु कयूं,
पाणीअ

0: खे बर्बाद थियण सां रोकियूं। रासायनिक ऐं कीटनाशक जो उपयोग बंदि करे जैविक खाद जो उपयोग कयूं, जनसंख्या वृद्धिअ ते रोक लॻायूं, तॾहिं असां सभु इन प्रकृतिअ जो आनंद वठी सघंदासीं। हाणे इजाज़त ॾींदा भारती ठकुर खे, जय झूलेलाल।
1: पर्यावरण असांजे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे ऐं इन जो संरक्षण कीअं कजे, इहा वार्ता ॿुधी रहिया हुयासीं भारती ठाकुर जी खां। तमामु सुहिणी ऐं जानकारी पूर्ण वार्ता। हाणे साथियो, असांजे इष्ट देव झूलण साईंअ जो चालीहो साहिब हली रहियो आहे, छो न मिली करे झूलेलाल जे हिन भॼन सां धूम मचायूं, ख़ुशियूं मनायूं।

झूलण सां आयो ही गीत गायो हो राम पंजवाणी भगवंती नावाणी ए साथियों झूलण साईं जे हिन धूम मचाईंदड़ गीत सां गॾु ही अॼु जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थियो। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे। वरी मिलंदासीं, सब जो भलो।

सावधान, भीड़ जनित हिंसा एक जघन्य अपराध है। कानून द्वारा अपराध साबित होने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में वर्तमान में मानसून की गति धीमी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान असमंजस का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले में प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पिछले दिनों जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के जल के अधिकतम संचयन है।

हेतु फॉर्म पॉइंट्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण अनुकूल और लोकहितकारी कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यों की विधानसभावार मॉनिटरिंग करने और शेष बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अभियान के तहत आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी ने बताया कि सागर जिला जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 90% कार्य पूर्ण कर चुका है। सागर जिले में वर्ष 2026-27 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा बीते दिनों मूंग एवं उड़द उपार्जन कार्य की समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि विपणन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन कार्य जिले में निर्धारित 22 केंद्रों पर किया जा रहा है। जिले में कुल 17,284 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें 13,995 किसानों द्वारा उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए गए हैं। स्लॉट बुक किए गए किसानों में से 9,269 किसानों से 45,957 क्विंटल मूंग एवं उड़द की खरीदी की गई है। इनमें 38,640 क्विंटल मात्रा रेडी टू ईट ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत 31,039 क्विंटल का परिवहन किया जा चुका है। जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त और सक्रिय है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जमीनी स्तर पर सही डेटा एकत्र किया जाए और पोर्टल पर उसकी एंट्री समय पर हो। महिलाओं की प्राथमिक जांच पूरी गंभीरता और पर्याप्त समय देकर करें। पिछले दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में प्राथमिक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान, स्क्रीनिंग और शीघ्र उपचार की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सागर, दमोह और पन्ना जिले के 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. सौरभ जैन ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं की नियमित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे। इससे रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, समय पर उपचार और सर्वाइकल कैंसर से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर के प्रांगण में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 43 नव प्रशिक्षित अधिकारियों ने 2 माह के कड़े बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। नव प्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विश्वास व्यक्त किया कि अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ कानून के शासन को बनाए रखेंगे और राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पिछले दिनों युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की प्रथम बैठक अपर कलेक्टर अविनाश रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माय भारत की गतिविधियों, वार्षिक कार्य योजना, विभागीय अभिसरण और युवाओं के अधिकतम पंजीयन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभाग 7 दिनों में माय भारत के लिए अपने अपने नोडल अधिकारी नामित करेंगे। जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पात्र अभ्यर्थियों का माय भारत पोर्टल पर अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में माय भारत नोडल शिक्षक और कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माय भारत पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनहितकारी अभियानों में माय भारत स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी, आलेख विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सामुदायिक गान शिक्षण पाठ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दोस्ती से, आवाज़ है उदित नारायण और सोनू निगम की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है, और इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सब की। आप हैं डॉक्टर मोहित कुमार, ऋतु कुमारी, संजय

सोनकर, आयुष शर्मा, राजवीर पाल, सौरभ चौधरी, निशा चौहान, भानु प्रताप, दुर्गा प्रसाद, मोहित शर्मा, सनी प्रसाद, अंशु दीक्षित, जय सिंह और कुणाल भाटी, कटिगनहली, सुदर्शन हाइट, बेंगलोर से। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

यह आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सबकी। आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर। शान और शांतनु मोहित्रा का गाया और संगीत किया ये गीत, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, फिल्म थ्री इडियट्स के लिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक बार फिर आपका स्वागत है व्हाट्सएप फरमाइश के कार्यक्रम में, जो प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से महमूद याकूब, आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ, डुमराव से फातिमा वली, डब्बू वली, असमा वली, सोनम वली, बिहार भवन दिल्ली से अकरम और उल्ला कुटरिया। इसी गीत को सुनने की फरमाइश है, जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। आपकी फरमाइश है कॉकटेल फिल्म के इस गीत के लिए, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है प्रीतम का और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। इस गीत को सुनने की फरमाइश है मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। साथ ही बेडी से हुक्म कर्म कर सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। आप सब सुनना चाहते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है शंकर महादेवन ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। अगली व्हाट्सएप फरमाइश है आप सबकी। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़। इस गीत को सुनना चाहते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर। काय पूछे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है सोनंद किरकिरे ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, साथ ही साथ स्वर भी अमित त्रिवेदी का ही है। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ अपना नाम और पता हमें लिख भेजें। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतिशा संधु और मैक्स। साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। साथ ही साथ मालवा रोड रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप सब सुनिए यारिया फिल्म का ये गीत, जिसका गीत और संगीत अर्को प्रपो मुखर्जी ने दिया है और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है शफाकत अमानत अली ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सबकी फरमाइश पर।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है भटिंडा पंजाब से, परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटगे, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोटगे। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर गोलमाल फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। इसे अपने सुरों से सजाया है शान और अनुराधा ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। कुटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। इसी गीत को सुनने की फरमाइश है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। आप सब सुनना चाहते हैं लंदन ड्रीम्स फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, स्वर हैं रूप कुमार राठौर और मिलिंद के। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। अगली फरमाइश करता हैं ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। गांव जाखौत राजस्थान से शंभुदयाल खडक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर। सोनू निगम का गाया, अभिजीत और सारिका ने लिखा ये गीत। फिल्म दोस्ती के लिए इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 11 बजते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान की शुरुआत भी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया पिंगली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, जो आज भारत के गौरव और आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारी बारिश के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा मौसम में सुधार होने के बाद जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रविवार को बहाल कर दी गई है। 3,886 तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना के तहत आज साधु राम धुर्वे एवं साथी बालाघाट द्वारा बैगा जनजाति कर्मा सैला नृत्य एवं अशोक मौर्य एवं साथी हरदा द्वारा काठी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी और सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा, फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: एक चेहरे पर रोज गुजारा होता है, प्यार किसी को कब दोबारा होता है। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। कोशिश होगी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन रिकॉर्ड्स करने की, और श्रोताओं आपसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आपका फ़ोन यदि लग चुका होता है तो आप कम से कम 10 दिन का इंतज़ार ज़रूर करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को भी मौका मिल सके इस कार्यक्रम में शामिल होने का। बहुत शुक्रिया यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करते हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं पहले फोन कॉल के साथ। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: अपना परिचय। बढ़िया हूँ, अपना परिचय दे दीजिए।
3: जबलपुर बरेला से बोल रही हूँ, वंदना उपाध्याय।
2: जी बहुत स्वागत है आपका, पहला फोन कॉल आपका है। अच्छा। जी बताएं।
3: मेरा फोन है, मुझे खुशी हो रही। जी, चलो जी। मेरा आज फोन लग गया।
2: हाँ, तो चलिए बताइए। हाँ, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
3: मुझे सुना दीजिए वो, क्या बोलते, कौन सा गाना, एक

0: जिंदगी जो क्या थम गए तो कुछ नहीं। मेरे भाई के जो को डेडिकेट करना चाहती हूँ, अमित तिवारी। उसने बहुत अच्छा भेजा था वीडियो में, तो मैंने बोली चल मैं तेरे को डेडिकेट करूंगी ये गाना।
1: चलिए।
0: उसके लिए मैं आज ये गाना भेजना चाहती हूँ। मेरी वो गोल्डी का बर्थडे है आज, तो उस उपलक्ष्य में भी उसको। हाँ
1: तो बिटिया है गोल्डी आपकी।
0: हाँ गोल्डी
1: चलिए
0: आशिता तिवारी
1: चलिए,
0: तिवारी।
1: बहुत शुभकामनाएं बिटिया रानी को, और
0: नमस्ते
1: बहुत धन्यवाद आपने
0: दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात की
1: जी।
0: तो।
1: हमें भी बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: हॅलो नमस्कार, जय बजरंग रेडी के श्रोता संग बस स्टैंड बंडावली से लक्ष्मण रेखा चाय वाले बोल रहे हैं। दीदी कैसी हो आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं
0: दीदी?
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। है ना, बहुत अच्छा मौसम है और चाय का तो खैर मौसम नहीं, 12 महीने चाय बहुत अच्छी लगती है, है ना? जी, तो लक्ष्मण रेखा जी आपका दूसरा फोन कॉल है हमारे पास में, ये बताइए कौन से फिल्म का कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: आज एक पिक्चर है बहार फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है
1: जी,
0: ये सुनवा देना दीदी
1: जी।
0: और एक आध बारा नाश्ता भी, जलेबी रसगुल्ला केक में खुआएं आपको।
1: बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से बोला, हमारे मुंह में पानी आ गया और हमें स्वाद भी मिल गया आपका, है ना?
0: हाँ दीदी,
1: चलिए बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, आपकी पसंद हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं।
0: ठीक है दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करने की सुने
0: जी, बहुत स्वागत है आपका। परिचय दीजिए आपका।
1: अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बहुत आनंद आ गया
0: जी, हमें भी बहुत खुशी है आपसे बात कर रहे हैं हम। और आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले तो।
1: जिला छतरपुर में बसा मनकारी है ग्राम, और थाना है महराजपुर, फूलचंद मेरा।

0: वर्मा जी शायद
1: जी, मैं नीतिका वर्मा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज। हाँ
1: जी, शुक्रिया जी, आपकी पसंद पूरी करेंगे हम। आप अपना पसंद का गीत बता दीजिए।
0: नीतिका जी बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, फिल्म का नाम है सौगंध। ओ सौगंध में है तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, पतझड़ सावन, इसमें सावन का भी जिक्र।

0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। मैम
1: बहुत स्वागत है विपिन कटारे जी, कैसे हैं?
0: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना भी चाहिए।
1: हाँ, सभी कुशल मंगल रहें, यही हम सबके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं।
0: जी बिल्कुल, और बताइए आकाशवाणी भोपाल में सभी लोग?
1: सभी कुशल मंगल है। आप बताएं, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: वैसे तो गाने बहुत सारे याद आ रहे हैं, और बारिश का महीना भी चल रहा है, और आज आपसे बात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। फिल्म का नाम है 1942 एंड लव स्टोरी, और इसी में गाना है ना रिम झिम तानु, और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया
1: जी।
0: बिल्कुल यही गाना सुना दीजिएगा, और आपके लिए रहेगा, और कुछ एक दो दोस्तों के भी नाम लेना चाहूंगा।
1: बिल्कुल लीजिए
0: जी, आपके लिए है, और हमारे दोस्त हैं गुलू अहरवार हैं, और जगत सिंह जी हैं, राहुल हैं, और वंदना उपाध्याय जी हैं, और लक्ष्मण जयकवाल जी हैं, और सभी के साथ सुनना चाहूंगा मैम।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन कटारे जी, आपने फोन किया
0: जी, थैंक यू।
1: और आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: सनी बोल रहा हूँ।
0: सनी, पूरा नाम बताइए।
1: सनी तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं बेटा?
1: छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ में कहाँ से?
1: बिलासपुर।
0: क्या पढ़ते हैं आप?
1: अभी हम 12th क्लास।
0: ठीक, कौन सा विषय है आपका?
1: वायो से पढ़ रहे हैं।
0: आज गीत सुनना चाहते हैं आप
1: जी?
0: पसंद का गीत बताइए, फिल्म का नाम।
1: मूवी का नाम है गदर।

0: मैं निकला गड्डी लेके।
1: चलिए मैं निकला गड्डी लेके, तो आप कहाँ जाने वाले हैं गड्डी लेकर?
0: घूमने जाएंगे।
1: चलिए बारिश के मौसम में घूमिएगा, मगर बहुत संभल कर, ठीक है? सावधानी जरूर रखिएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आपका परिचय?
0: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ मैडम, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला स्टोर से
1: जी।
0: तो आज मैडम ये फोन करें गीत सुने हैं या बात आपकी गीत हमारे
1: हैं? जी फोन करें गीत सुने हैं, आपके पसंद का गीत बता दीजिए।
0: मैडम मीना कुमारी जी का जन्मदिन है
1: जी,
0: तो इन्हीं की याद में मुझे फिल्म चित्रलेखा का गीत सुनना है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओ।
1: जी
0: जी, आप कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम नीतिका वर्मा है।
0: जी नीतिका जी, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया, बारिश बारिश के क्या हाल है भोपाल में?
1: बस कभी गिरता है कभी खुल जाता है,
0: यहाँ भी ऐसे ही चलता है।
1: हाँ, और कभी कभी ऐसा बरस पड़ता है कि घर से निकलना दूभर हो जाए।
0: हाँ, इसका भी अपना एक मजा है।
1: जी जी बिल्कुल, प्रकृति के हर मौसम का अपना एक आनंद होता है और उसे हमें स्वीकार करना भी चाहिए।
0: जी अभी अपन ने विगत दिनों इतनी गर्मी झेली है तो थोड़ा सा ठंडे होना भी जरूरी है, भीगना भिगाना।
1: बिल्कुल, ये धरती की प्यास नहीं बुझेगी तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी, है ना?
0: बिल्कुल सही है।
1: तो चलिए विवेक व्यास जी, आपने फोन किया, बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैम जी, मैं अरविंद अग्रवाल
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: आपका फोन कब लगा था पिछली बार सर?
1: याद तक नहीं, काफी दिन हो गए।
0: चलिए 10 दिन का हम एक अंतराल रखना चाह रहे हैं कार्यक्रम में, ताकि हमारे नए श्रोताओं को मौका मिलता रहे। सिर्फ इसलिए जानकारी के साथ साथ में ये सूचना भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि लगभग 10 दिन के अंतराल में आप यदि फोन करेंगे तो हमें खुशी होगी और आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। जी आपने फोन किया है, बताएं आपकी पसंद।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा सावन को आने दो। लाइव में तो आपसे पहले भी काफी बार हो चुकी
0: है। जी जी जी।

0: हेलो,
1: बिना रुके बिना झुके और बिना थके जो निरंतर चलता रहता है वो हिंदुस्तानी कहलाता है। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और दीदी जी को सत सत राम राम भेंट कर रहा हूँ।
0: जी दिनकर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: और दीदी जी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा।
0: मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ सर।
1: जी दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कॉल को रिसीव किया और आपसे जो है अक्सर बात करने का मौका मिल जाता है।
0: हमारे लिए भी ये खुशी की बात है आपने फोन किया है। आप बताएं कि आज आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको
1: सुनते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं।
0: बहुत शुक्रिया दिनकर जी, आपने फोन किया है, आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी, परिचय दे दीजिए आपका। कौन बोल रही हैं?
1: खुशबू बोल रही हूँ, बीना से।
0: जी खुशबू जी, बीना से बोल रही हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पर रहती
0: हूँ। रेडियो तो सुनती है ना?
1: मॉर्निंग प्रोग्राम सुनती हूँ मैम। आप कैसे हो?
0: हम बहुत अच्छे हैं। खुशबू जी, आज आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत बता दीजिए तो हम आपको सुनवाएंगे।
1: फिल्म का नाम है मूवी प्यार कीजिए,
0: जी बोल।
1: नैनीताल नाम।
0: गए आप नैनीताल?
1: नहीं गए अभी,
0: कल मिलेगा आपको 11 बजे से 11:58 के बीच ये गीत बजेगा, है ना? सीक्वेंस कोई सी भी हो सकती है आपकी, ठीक? हाँ, ये रिकॉर्डेड है तो इसमें आपको ये आकाशवाणी आप ट्यून करते होंगे ना, रेडियो पर या मोबाइल पर? हाँ, तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण पूरी सभी किसी भी रेडियो स्टेशन को आप ट्यून करेंगे आपको मिलेगा, है ना? जबलपुर पे भी मिलेगा 11 बजे से। सारे आकाशवाणी जो हैं वो भोपाल को ही ट्यून करते हैं, क्योंकि आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण जो है वो भोपाल केंद्र से किया जाता है।
1: ओके
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। फोन करेगी सुने हैं मैडम।
1: जी जी, पहले तो आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं दमोह से गिरधारी सेन बोल रहा हूँ जी। मैडम
1: जी,
0: मैम मेरे को गाना सुनना है माँ शेरा वाली का।
1: जी कौन सा?
0: सबसे बड़ा तेरा नाम और शेरा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम,
1: सुहाग फिल्म का गीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए आज कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं का तन से और मन से स्वस्थ रहना, आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं को नशे के खतरों से जागरूक रहने और उससे दूर रहने पर जोर दिया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान के दौरान हर रविवार को गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आज देश भर में 28,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 करोड़ युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। आज स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया की जयंती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पिंगली वेंकैया ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर आज भोपाल में विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश के निर्माण और विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ समारोह को भोपाल से संबोधित करते हुए यात्रा के सफल और मंगलमय आयोजन की शुभकामनाएं दी हैं और भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना के तहत आज साधुराम धुर्वे एवं साथी बालाघाट द्वारा बैगा जनजाति कर्मा सैला नृत्य एवं अशोक मौर्य एवं साथी हरदा द्वारा काठी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की पसंद का, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाद्य, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया मौसम फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, संगीत मदन मोहन का।

अगला गीत हमने लिया आमने सामने फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी की, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत दिया है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। सुना चाहा इंदौर से लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी लीला मनन तानिया ने। बड़वास उज्जैन से ये पत्र आया, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का आमने सामने फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में है। गुलजार ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की खयाम ने। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये गीत हमने लिया है, जिसे सुनना चाहा है ज़िला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश, धनंजय, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री। मानपुर से पत्राए विजय, रानी, महिमा वैद्य, नीतू और इनके सभी साथियों ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया आंधी फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, गुलजार के बोलों को धुनों में पिरोया आरडी बर्मन ने, सुना चाहा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका प्रोनानिका, उत्कर्ष नेताम, आदर्श नगर मलोट से पत्राया राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और नवीन शर्मा का।

0: आंधी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने के छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे अब सुनिए संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे कामिनी काय कांतारिका भाग 18।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 18वां भाग। अब तक आपने सुना त्रिलोचन दोबारा अपनी सत्या दीदी को खोजने उज्जैनी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसिका ही उनकी सत्या दीदी हैं। यहाँ वे राजकीय उत्सव में रानी पिंगला के पार्श्व में खड़ी वैसिका को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। उधर चारुमित्रा राजा भर्तृहरि को उज्जैनी वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। अब आगे

0: पिंगलेश्वर द्वार के प्रहरियों ने धूल के गुबार में घिरे अश्वारोही रक्षकों के बीच में आते हुए दो रथों को देखा। उनकी मंद गति बता रही थी कि वो कहीं दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। निकट आने पर रक्षकों की एक टुकड़ी उनके साथ आती दिखाई दी। कुछ समय में आगे के रथ की ध्वजा स्पष्ट हुई, जिस पर दो नृत्य रथ मयूर चित्रित थे। मार्ग इस समय धूलाच्छादित होने लगता है और धुंधलका भी। पश्चिम के आकाश में एक मेघ खंड ने अस्तमान सूर्य को ढक लिया था, इसलिए सांध्य प्रकाश भी छन कर आ रहा था। एक अश्वारोही रथ के पास से द्वार की ओर आगे बढ़ा।
1: महामती देवी चारुमित्रा नगर प्रवेश की अनुमति चाहती हैं।

0: पिंगलेश्वर द्वार का यह प्रदान विनयपाल देवी चारुमित्रा का महिमामयी महाकाल नगरी में हार्दिक स्वागत करता है। देवी कहाँ पहुंचना चाहेंगी?
1: जाना तो हमें श्रेष्ठी नागदत्त के यहाँ है। देवी वसुंधरा को सूचना दे दी गई है।
2: हमारी स्वामिनी वसुंधरा देवी का आग्रह है कि देवी चारुमित्रा की उपस्थिति 2-4 दिन गोपनीय रहे, उनके आगमन को प्रचारित ना किया जाए।
0: अच्छा हुआ कि आपने सीधे मुझसे भेंट की और स्वयं मैंने ही आपका स्वागत किया। कोई और यहाँ नहीं है, आप जानते हैं बात फैलते कितनी देर लगती है, किंतु इस समय इनका आगमन उत्सव के समय तो आई ही नहीं थी। पूरा राज्य इनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
2: क्या पता अब महारानी को पुत्र जन्म की बधाई देने आई हूँ।
0: संभव है, किंतु नरेश तो अभी प्रवास में ही है।
2: हमें इन सबसे क्या लेना देना, ये जाने और इनका काम। ये रखिए आप।
0: ये स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मुद्रा ग्रहण करने की बात इधर उधर चली गई तो मुझ अकिंचन की तो आजीविका ही संकट में पड़ जाएगी।
2: क्या कहते हैं आप, कितना पुराना व्यवहार है अपने बीच।
0: सो तो है, तभी तो मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ।
2: आप तो हमारे अपने हैं। चलो बंधुओं। अरे यहाँ तो देवी चारुमित्रा का स्वागत करने देवी वसुंधरा स्वयं ही पुत्र सहित मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं।
3: आ जाओ चारु, महामात्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: मेरी अथवा उज्जैनी नरेश की?
4: तभी देवी चारुमित्रा के रथ से राजा भर्तृहरि भी उतरते हैं। उनका वेश राजसी या अवधूत का न होकर वणिकों जैसा है।
5: अरे आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई महाराज, मुझे ही बिना बताए चले गए थे। ये तो सोचा होता कि इस वृद्ध के झुके हुए श्लत कांधे पर आपके विश्रुत कुल की ख्याति के अनुरूप इस पवित्र राज्य का भार वहन कर पाएंगे। मैं बहुत थक गया हूं महाराज, अब आप ही संभालें अपना राजछत्र और शास्ती।
6: अरे अरे क्या करते हैं महामात्य, आप आदरणीय और पूज्य हैं, मेरे लिए ही नहीं राज्य के लिए भी और संपूर्ण प्रजा के लिए भी। आपका स्थान वहां नहीं, इस पीठी पर है, बैठिए।
5: देव ये पीठी आपके लिए है।
6: पीठी उसकी होती है आर्य जो उसकी गरिमा बनाए रखे, बचाए रखे। आपने तो मेरी अनुपस्थिति में अवंती के राज्य को वर्ष भर से संभाला है। आपकी निष्ठा, शील, निर्वाह और उपकार प्रशंसनीय है आर्य, उसका प्रतिदान तो संभव ही नहीं।
5: देव अपने आगमन को आपने इतना गोपनीय क्यों रखा? यह अवंतिका कब से आपके दर्शन पाने को आतुर थी।
6: मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं महामात्य, जैसे यही कि उज्जैनी का शासन भर्तृहरि के बिना भी तो चल सकता था। जब भर्तृहरि नहीं था तब भी उज्जैनी थी, जब भर्तृहरि नहीं होगा तब भी अवंती का राज्य रहेगा।
5: निश्चय ही उज्जैनी के अतीत और भविष्य का होना भर्तृहरि पर आश्रित नहीं है, किंतु उज्जैनी का वर्तमान तो पूरी तरह भर्तृहरि से बंधा हुआ है महाराज, कार्य और कारण दोनों ही दृष्टियों से। अवंती का राज्य राजपुत्रों की क्रीड़ा का कंटुक नहीं है महाराज, ये महाकाल का प्रसाद है जिसे धारण करना होता है विनय से, शील से, पुरुषार्थ से।
6: आप राजा के कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं महामात्य, किंतु यदि कोई साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहे
5: तो उसे किसी साधारण मां के गर्भ से जन्म लेना होगा महाराज।
6: लेकिन जन्म लेना किसी के वश में नहीं है महामात्य।
5: यही मैं कह रहा हूं, नरेश के रूप में आपका चयन

0: काल ने किया है, तभी तो आपको महाराज गर्दभिल्ल की राजमहिषी की कोख से जन्म मिला।
1: उसी कोख से कुमार विक्रम ने भी जन्म लिया है।
0: हाँ, और वो उज्जैनी का राजदंड संभालने के लिए आतुर भी है। महाराज, आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, विश्राम कर लें, मैं बाद में आता हूं। चारुमित्रा का नगर आगमन अधिक समय तक छुपा नहीं रहेगा। कल देवी वसुंधरा के द्वार पर भीड़ लगने लगेगी। देवी वसुंधरा राज्य की सम्मानीय और सरल महिला हैं, राज्य के प्रति उनकी निष्ठा समर्पित है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई असुविधा या चिंता हो। चारुमित्रा की व्यवस्था अन्यंत्र करनी होगी।
1: आर्य, चारुमित्रा को राजमहालय के अधिवास में भी तो ठहराया जा सकता है।
0: देव, इसके लिए महादेवी पिंगला से अनुमति लेनी होगी। आप चिंता ना करें, समुचित प्रबंध हो जाएगा। देव, प्रश्न पूछने की बलवती इच्छा है।
1: पूछिए।
0: बिना कुछ कहे सुने आप अचानक क्यों चले गए थे? इतने दिन कहां रहे? आपको लौटाने के लिए हमने इतने प्रयास किए, क्या कहीं से आपको पुत्र जन्म की सूचना भी नहीं मिली? आपकी अनुपस्थिति में अवंतिका का इतना बड़ा उत्सव फीका रह गया, मात्र एक औपचारिकता। मैं सोचता था कि आप सबसे पहले महादेवी पिंगला के बारे में पूछेंगे, पुत्र को देखने और गोद में लेने की उत्सुकता प्रकट करेंगे, किंतु
1: ये सब मैं आपसे कहूंगा, पूछूंगा भी, आपके सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर भी दूंगा महामहात्य, पर समय आने पर, अभी नहीं। अभी तो महाकाल को माथा नवाकर उज्जैनी को देखना चाहता हूं, फिर कुछ और।
0: महाराज, उज्जैनी अब उतनी निरापद नहीं रह गई है। आपके ना होने से दंड भय भी नहीं रहा और अपराधी अधिक सक्रिय हो गए हैं। राजपुरुष ही बाहुबलियों को संरक्षण देने लगे हैं। अब आप आ गए हैं, देखिए कि ये वृत्त पूर्ण रथ कैसे राजचक्र को अपनी स्वाभाविक गति में लाता है।
1: महामात्य, आप अपने को बार बार वृद्ध न कहा करें। आपकी दृढ़ता और क्रियाशीलता पर किसी भी युवक को ईर्ष्या हो सकती है। सर्वप्रथम मैं देवादिदेव महाकाल के सम्मुख मस्तक टेकने जाना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे ना?
0: महाराज, इन दिनों न जाने कितनी आंखें मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीमंतों के गुप्तचर मेरी हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं। मैं अपने दो अति विश्वस्त अनुचरों को आपके साथ भेजूंगा, उन्हें यहां कोई नहीं पहचानता है, वो आपकी ही भांति वणिक भेष में होंगे।
2: राजा भर्तहरि से दिशा ज्ञान लेकर महामात्य रक्षक दल को साथ लेकर नीलगंगा के बस्ती घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। नदी पार करके आगे महामात्य और पीछे सैनिक चलते हुए एक झोपड़ी के द्वार पर आ पहुंचते हैं।
0: कोई है यहां? अनिरुद्ध?
3: कौन है? यहां कोई अनिरुद्ध नहीं रहता, आगे देखो।
0: अरे, अनिरुद्ध तो यहीं रहता है, उससे कहो महामात्य आए हैं।
3: पूज्यवर को सेवक का प्रणाम।
0: अरे अरे,
3: आप क्यों पधारे? बुलवा लेती सेवक को।
0: ये किशोर वही वीर है ना जो 20 कोस जाकर सूर्यास्त तक वापस आ सकता है?
4: हाँ देवता, मेरा नाम कंद है।
0: अच्छा अच्छा, रास्ता दो, तुम्हारी इस आक्रामक मुद्रा में कोई प्रवेश कैसे कर सकता है?
4: पधारे देव।
5: प्रणाम देव, यहाँ तो आपके खड़े होने लायक स्थान भी नहीं है।
0: सौभाग्यवती रहो पुत्री, मैं अनिरुद्ध को लेने आया हूं, एकाएक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आ गया है।
5: आदेश करें, हम किसी काम आ सके, ये हमारा सौभाग्य होगा।

0: अंतापुर में कोई असुविधा तो नहीं है?
1: देवी वैसिका मेरा हर समय ध्यान रखती हैं। उन्होंने मुझे महादेवी के कक्ष की झाड़ पोछ का काम सौंपा है। इस तरह सब कुछ परीक्षित हो जाता है। यूं मैं दिन भर द्वार के आसपास ही रहती हूँ।
0: और तुम्हारी सुरिका?
1: अंतःपुर में वही मेरी संगनी है हर समय।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, फिर चले अनिरुद्ध। बेटी हम निकलते हैं, कुछ पूछना चाहोगी?
1: ये धृष्टता नहीं करूंगी, आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु थोड़ी सी उत्सुकता अवश्य है।
0: तो इतना जान लो कि महाराज उज्जैनी आ पहुंचे हैं, किंतु उनका आगमन अभी गोपनीय है। अनिरुद्ध उनकी सुरक्षा में रहेगा।
1: महाराज, वो तो हमारे पूज्य पाहुने हैं देव। अनिरुद्ध उनके लिए कुछ भी कर सकता है।
2: पूज्य आज्ञा दे तो मैं भी दादा के संग चलूं, सैनिक का काम कर सकता हूं मैं।
0: अरे तुम तो वीर सैनिक हो, पर यहाँ वृंदा अकेली रहेगी, रक्षा के लिए कोई पुरुष तो होना ही चाहिए ना?
2: सो तो है।
3: अनिरुद्ध को अपने साथ लेकर महामात्य देवी वसुंधरा के आवास पर महाराजा से भेंट करने की प्रत्याशा में पहुंचे। कक्ष में देवी वसुंधरा, उनके पुत्र और देवी चारुमित्रा के अतिरिक्त एक व्यापारी और उपस्थित था। महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़े। महामात्य के स्वागत में ये सभी उठ खड़े हुए। महामात्य की उत्सुक दृष्टि महाराज को यह वहां खोज रही थी और साथ ही औपचारिकता का वो निर्वाह भी कर रहे थे।
0: महाकाल की नगरी अवंती राज्य की राजधानी में कला प्रवीण विदुषी देवी चारुमित्रा का स्वागत है।
4: देव की ख्याति सुनी थी, आज दर्शन पाकर कृतकृत्य हुई।
5: सुना है देवी चारुमित्रा कवि भी हैं? क्या ही सुखद हो कि इसे देखने और सुनने का अनुभव हमें काव्य के माध्यम से बताएं।
6: अद्भुत होगा यह, आप क्या कहती हैं मातुश्री? देवी चारुमित्रा स्वीकार करें तो?
4: आर्य किसी चिंता में है?
0: देवी का अनुमान किसी सीमा तक ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि आप सभी के साथ यहां महाराज के भी दर्शन होंगे, और वो यहां नहीं है, मैं यही सोच रहा था। आप इसे चिंता भी कह सकते हैं।
6: अर्थात महामात्य असहमत नहीं है, देवी चारुमित्रा को सुने, इस स्थिति पर वह क्या कहती हैं?
4: दूरे पि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम करणेव तृप्ता न तु चक्षुसी में तयोर विवादम परिहर्तु कामा समागतो हम तव दर्शनाये।
7: साधु साधु साधु साधु।
6: कृपा कर अर्थ भी स्पष्ट करें।
3: श्रेष्ठी पुत्र ने पद का अर्थ जानना चाहा तो महामात्य की दृष्टि कक्ष में उपस्थित व्यवसायी पर जा ठहरी।
0: महानुभाव, आपसे मेरी ये प्रथम भेंट है, देवी वसुंधरा ने भी परिचय नहीं करवाया, क्या आप देवी चारुमित्रा के साथ पधारे हैं?
5: कदाचित मेरी उपस्थिति महामात्य को रुचिकर नहीं लगी।
0: उपस्थित तो आप हैं ही, देवी चारुमित्रा से आपका आग्रह आपकी काव्य मर्मज्ञता को भी व्यक्त करता है, अतः उचित ये होगा कि आप ही इन पंक्तियों पर प्रकाश डालें।
5: अर्थ यही है महामात्य, कि आपका यश और ख्याति दूर से सुनकर कान तो तृप्त हो गए, नेत्र नहीं। इस विवाद का परिहार करने की इच्छा से मैं तुम्हें देखने आई हूं।
0: पद अच्छा है, अर्थ भी अच्छा है, किंतु इससे भी अच्छा है आपका गूढ़ वेश। आपको अब कोई चीन नहीं पाएगा, आप नगर भ्रमण के लिए अब निकल सकते हैं। ये विश्वस्त सैनिक आपके साथ रहेगा। सैनिक,
8: तुम सिर ऊंचा करो सैनिक।

0: तुम पैठार गांव के अनिरुद्ध हो ना?
1: हाँ महाराज, आपने पहचान लिया, ये वही है।
0: बंधु, हमारी भावच वृंदा कहाँ है? शची कैसी है? ग्रामणी वीरभद्र और अन्य सब कैसे हैं?
2: महाराज, आपको मेरा स्मरण है, मैं धन्य हुआ। हम वनवासियों की स्मृति आपको है, पैठार गांव कृतार्थ है। वृंदा तो हमारी जीवनी शक्ति है, और शची के भाग्य को क्या कहूं। उसे आस है कि उसका अवधूत एक दिन उसके पास वापस लौटेगा।
0: बंधु, लौटता वो है जो कहीं दूर जाता है। शची तो हर गैल घाट ऊंची नीची पगडंडी पर हर कहीं मेरे साथ है। ये उसकी दी हुई लकुट को देखो, पैठार ग्राम में शची ने मुझे सौंपी थी, सदा मेरे साथ का संबल बन गई है ये।
2: ये तो हमारे कुल की लकुट है, वृंदा इसे रात बरात नदी नालों के लिए अपने साथ रखती थी।
0: शची कैसी है निरुद्ध?
2: स्वस्थ ही मानिए महाराज, बाट जो रही अपने अवधूत की। वर्षा बीती, शरद ऋतु गई, बसंत और फिर ग्रीष्म का जाना, पावस कहाना, न जाने कितने दिन बीते। संध्या होते ही उसकी आंखें उज्जैनी से आने वाले मार्ग पर टिक जाती हैं। रात गहराने तक वो वहीं एक टक बैठी रहती है, स्मृतियों की

0: अब हमें चलना चाहिए महामात्य। इतने ही दिनों में क्या से क्या हो गया इस कनक प्रगा उज्जैनी को। राज्य की स्थिति देख रहे हो अनिरुद्ध, मेरे पास केवल आज रात का ही समय है। यहां अधिक समय तक मेरा होना अप्रकट नहीं रहेगा। प्रजा निश्चय ही त्रस्त होगी, क्योंकि सर्वत्र लंपट लंपाक और कल्लांच प्रभावशाली हो रहे हैं। जिन पर रक्षा और सुशासन का दायित्व है वो निर्लज्ज होकर धन संग्रह में लिप्त हैं। आह अवंती
1: महाराज, आह
0: बंधु, तंत्र की सभी अच्छाइयां बुराइयां ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। प्रजा को इस अराजकता में धकेलने का अपराधी मैं हूं।
1: अपने आप को दोष न दे महाराज, एक बार उज्जैनी लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा।
0: बंधु, मधुपान की इच्छा है?
1: इस समय देव की सुरक्षा का दायित्व है मुझ पर।
0: दो एक चषक।
1: आपको सुरक्षित आवास तक पहुंचाकर मैं पूरा भांड स्वीकार कर लूंगा, किंतु अभी तो आप क्षमा ही करें।
0: सामने पान ग्रह देख रहे हो अनिरुद्ध, दूर दूर तक विख्यात। वस्तुतः ये श्रेष्ठियों श्रीमंतों अस्पदों का मनोरंजन स्थल है। इसमें प्रवेश अत्यंत व्ययसाध्य है। स्वर्ण से नीचे की मुद्रा तो यहां चलती ही नहीं। आओ, उज्जैनी का सामंती पहलू भी देखें अनिरुद्ध, आओ।
2: श्रेष्ठी, कहां से पधारे हैं?
0: सौराष्ट्र से।
2: पधारिए, आपका स्वागत है। इस और पधारी श्रेष्ठीवर, यहां विराजे।
0: कोई अन्य पीठिका नहीं है, वस्तुतः ये दिशा मेरे लिए अनुकूल नहीं है। उस ओर भी तो पान पीठ रिक्त है।
2: आपके लिए वहां बैठना अनुकूल नहीं होगा, वह राजन्य है। कुमार विक्रम राजा के अनुज कब क्या व्यवहार कर बैठे, हमारे लिए तो सभी सम्मान्य है।
0: किसी मान अपमान का दोष मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बड़े खूं अतः भाग्य भी रूबी। वहां आसन स्वच्छ करें और दो चषक यवनी मद के उपलब्ध कराएं।
2: सम्मानित कुमार, यह सौराष्ट्र के सार्थवाह है, यदि आपकी अनुमति हो तो यहां बैठ जाएं। जैसी आज्ञा हो।
3: तीन चषक कैके की दाखा और उस हरित परिधान वाली तनमंगी के हाथों शिकता करो। मुझे तो लगता है कि महाराज या तो दस्युओं के हाथ बढ़ गए या शत्रुओं के। मुझे तो अब उनके जीवित होने में भी संदेह है। कहीं बंदी होते तो कोई ना कोई सूचना मिल जाती।
4: इतने दिनों तक राज सिंहासन का खाली रहना भी उचित नहीं है महाराज, राज परिषद में यह प्रश्न भी उठना चाहिए।
2: अनेक सामंतों का भी यही मत है, किंतु महामात्य का तर्क है कि अभी ना तो कोई बाहरी संकट है और ना ही किसी सैन्य अभियान की आशंका, इसलिए।
3: वो धूर्त महामात्य, इच्छा होती है कि उस बुढ़े का सिर काट कर गढ़कालिका पर चढ़ा दूं।
4: शांत रहें कुमार, शांत रहें, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं।
2: महामात्य ने राजमहालय में अपने विश्वस्त अनुचर नियुक्त कर रखे हैं, वहां केवल क्रीत दासी वैसिका का आदेश चलता है। वो दासी आस पदों की उपेक्षा करती है, उनका अपमान करती है।
3: कुछ भी कहो विजय सेन, उदासी मुझे आकर्षित करती है, एक चुनौती सी देती है।
4: कुमार के लिए भला क्या संभव है, आप चाहें तो अभी पकड़ लें जाकर उस दासी को। कौन रोक सकता है भला आपको, महाराज तो है नहीं, अब आप ही तो स्वामी हैं अवंती के। फिर दासियां तो होती ही हैं स्वामी को सुख देने के लिए।
3: सुनो, वैसिका अब दासी नहीं है। रानी पिंगला ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया है और राज पुरोहित ने उसे अपनी पुत्री माना है और राज्य की सम्मानित नागरिक है। ऐसे क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कैसे नहीं मानते। कुमार विक्रम के प्रस्ताव को अभी चल।
2: कृपया उन्मत्त ना हो कुमार, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मेरे आवाज पर चलकर सोचते हैं कि करना क्या है।
3: अरे करना क्या है, वैसिका के पास चलना है और क्या है। चलो चलो।
2: ओ, स्वामी ने तो मदिरा चखी भी नहीं, दूसरी लाऊं?
0: नहीं, मन कहीं खिन्न सा हुआ है। ये राजत्य पुरुष अभद्र ही नहीं लंपट भी है।
2: बड़े लोग हैं, हम तो सेवक हैं, क्या कर सकते हैं। स्वामी यदि द्यूत कक्ष में मनोरंजन करना चाहते हैं तो वहां लिए चलता हूं। और ये मदिरा पात्र भी दूर नहीं है द्यूत कक्ष, मात्र आंगन पार करना है, कदाचित वहां स्वामी की खिन्नता दूर हो सके।
5: जिस प्रकार कुमार विक्रम की बातें सुनने के लिए भर्तहरि इस मध्यपीठ पर आए थे, उसी भांति दो व्यक्ति उनकी निकट की पीठ पर आकर बैठे थे और कनखियों से भर्तहरि को देख लेते थे। भर्तहरि जान गए थे कि ये कूट पुरुष हैं जो उन पर दृष्टि रख रहे हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 18वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी कायकांतारे की 18वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए आज कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं का तन से और मन से स्वस्थ रहना और आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं के नशे के खतरों से जागरूक रहने और उससे दूर रहने पर जोर दिया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान के दौरान हर रविवार को गतिविधियां आयोजित होंगी। आज देशभर में 28,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 करोड़ युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ समारोह को भोपाल से संबोधित करते हुए यात्रा के सफल एवं मंगलमय आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। भारी बारिश के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा मौसम में सुधार होने के बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बहाल कर दी गई है। खंडवा में गायक किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के महिला सभा अंक में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ फलाहारी व्यंजन। बहनों, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। यह केवल भोजन ही नहीं बल्कि बच्चे के लिए पहला टीका भी है, जो उसे अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। इसी महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। जन्म के बाद शिशु का संसार पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर होता है। ऐसे में माँ का दूध उसके लिए संपूर्ण आहार है। इसमें पानी, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रोगों से लड़ने वाले प्रतिरक्षी तत्व उचित मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि जीवन के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देने की सलाह दी जाती है। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई अन्य आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। सखियों, विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु के लिए अमृत के समान होता है। यह बच्चे को निमोनिया, दस्त, संक्रमण तथा कई अन्य बीमारियों से बचाता है। बहनों, स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत

0: लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद माँ का शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। इतना ही नहीं, स्तनपान माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को भी गहरा बनाता है। जब माँ अपने शिशु को गोद में लेकर स्तनपान कराती है, तब केवल पोषण ही नहीं बल्कि स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का भी संचार होता है। आजकल अनेक प्रकार के डिब्बा बंद दूध बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वे माँ के दूध का स्थान नहीं ले सकते। माँ का दूध हमेशा ताजा, स्वच्छ, सही तापमान पर और पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। कामकाजी माताओं के लिए भी स्तनपान संभव है। वे अपने दूध को स्वच्छ तरीके से निकाल कर सुरक्षित रख सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को पिला सकती हैं। बहनों, 6 माह पूरे होने के बाद बच्चे को घर का नरम और पौष्टिक पूरक आहार देना शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। भेंट वार्ता में डॉक्टर राम कुमार चौधरी से भेंट कर रही हैं श्रीमती हेमलता चौधरी।
1: कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो उसका प्रथम आहार माँ का दूध ही होता है। माँ के दूध में वह ताकत होती है कि उससे बच्चा हृष्टपुष्ट, ताकतवर और तंदुरुस्त बनता है, स्वस्थ बनता है। इसी के लिए माँ के दूध को अमृत के समान बताया गया है। और क्या कुछ विशेषताएं हैं माँ के दूध में, यह जानने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राम कुमार चौधरी जी को। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं शासकीय जिला चिकित्सालय शिवपुरी में। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करती हूं। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत के लिए हमने जो विषय लिया है वह है कि शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। तो इस विषय पर हम यही आपसे बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि माँ का दूध, जिसे कि अमृत तुल्य कहा जा रहा है, वह किस तरह फायदेमंद है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिससे कि वह एक बच्चे के लिए उसे सेहतमंद बनाता है और उसके लिए फायदेमंद हो जाता है।
2: नवजात शिशु के जन्म के समय जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक स्तनपान है, स्तनपान के द्वारा बच्चे को संपूर्ण पोषण मिलता है। जो संपूर्ण पोषण माँ के दूध द्वारा मिलता है, जिसको हम अमृत कहते हैं। वास्तव में ये दूध बच्चे के लिए अमृत ही है। हम उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, दूध पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको वो पोषण मिल सके और बच्चा एक्टिव रहे।
1: जी, यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि जल्दी से जल्दी, अर्थात जो पहला दूध होता है माँ का, पीला गाढ़ा जो दूध होता है, वो बहुत बहुत ही अधिक पौष्टिक होता है। अच्छा, इस तरह की एक भ्रांति होती है कि बहुत सी माताएं जानकारी के अभाव में, कुछ भी मान लीजिए, वो दूध नहीं देती हैं या उनके साथ में जो उनकी निर्देशक मार्गदर्शक होती हैं वो मना करती हैं उस दूध को देने के लिए कि भाई वो बहुत समय से जमा हुआ स्तनों में एक गंदा पदार्थ है। तो इस तरह की ये भ्रांति दूर करने के लिए आप थोड़ी सी समझाइश हमारी बहनों को ज़रूर दें।
2: नहीं, वास्तव में वो दूध अमृत ही है बच्चे के लिए और वो कोई गंदगी नहीं होती है। उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पानी की मात्रा और विटामिंस होते हैं जो कलेक्टेड रहते हैं पहले। वो दूध प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को पिलाना ही चाहिए। इस काम के लिए जो है ना, हमारा अस्पताल का स्टाफ भी एक्टिव रहता है और इसके लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसमें उनके परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनको बताया जाता है कि किस तरह से ये बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब कि यह जो माँ का प्रथम दूध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और इससे बच्चे में जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होती है और वो स्पष्ट बनता है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक माँ जो स्तनपान करा रही है, वो अपने शिशु को एक तो कब तक उसे स्तनपान कराना है और कब कब कराना है, कितनी बार कराना है, ये भी आप विस्तार से हमारी बहनों को बताएं।
2: जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सकता है हम स्तनपान शुरू कराएं और उसको लगातार 6 महीने तक उस दूध के अलावा कुछ नहीं देना है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। सिर्फ दूध ही पिलाना है, माँ का दूध ही पिलाना है और उसको हर 2-3 घंटे के अंतराल पर पिलाना है। 24 घंटे में कम से कम 10

0: 10 बार उसको दूध पिलाना है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि अक्सर हम देखते हैं, देखने में आता है कि माएँ तभी दूध पिलाती हैं जब बच्चा रोता है, क्योंकि वे समझती हैं कि उसे भूख लगी तो वो इंगित करता है और रो करके जाहिर करता है, तो ऐसा उनको नहीं करना है।
0: ऐसा नहीं करना जी, हर 2-3 घंटे के अंतराल पर उनको दूध पिलाना है,
1: भले ही बच्चे की मांग हो अथवा ना हो, उसे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहना है। बहुत सही बात आपने हमारी बहनों के लिए बताई कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि उन्हें बच्चे को दूध पिलाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, इसी के लिए हमारे पूरे देश में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह भी मनाया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह कैंपेन चलाया जाता है ताकि हमारी जो दूध पिलाने वाली धात्री माताएं हैं वे अपने स्तनपान के महत्व को समझें और बच्चे को समय पर दूध पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सी माओं को यह भी एक अपने चिंता रहती है कि भाई दूध पिलाने से कहीं हमारे शारीरिक सौंदर्य में कोई कमी आ जाएगी या किसी तरह की कोई कमजोरी आएगी, तो ये भी आप उनकी भावना को निर्मूल करने के लिए कुछ बताएं।
0: नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं आएगी उनको, बल्कि और अच्छा है माँ के लिए। जिस दूध को बच्चे को पिलाने के लिए उनको बार बार तैयार करना पड़ेगा, रात में उनकी नींद खराब होगी और शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं अच्छे बदलाव होते हैं। जैसे कि एक और स्टडी में आया है कि अगर माँ पूरे तरीके से बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको कैंसर की संभावना कम रहती है, ब्रेस्ट कैंसर कम डेवलप होते हैं, उसको मानसिक तनाव भी कम झेलने पड़ेंगे, रात में जगना पड़ेगा। ये तो प्रिपेयर्ड दूध है, उसको कुछ नहीं करना, ना गर्म करना, ना छानना, ना कुछ करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी आप हमारी बहनों को यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल निडर होकर के स्तनपान कराना है और बल्कि उनके स्वास्थ्य में और बढ़ोतरी होगी सोच करके उनको स्तनपान कराना है। दूध पिलाते समय कुछ बातें भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कभी कोई माता लेटे लेटे ही स्तनपान कराती है या गोद में लेकर के, तो किस तरह कराना है, थोड़ा सा ये भी हमारी बहनों को आप बताने का कष्ट करें डॉक्टर साहब।
0: माँ अगर स्टेबल है, ठीक है, वो बैठ सकती है तो कोशिश करे कि वो बैठ कर ही स्तनपान कराए, और बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा ऊंचा रखे, जिससे क्या हो गया कि उसके मुंह में दूध नहीं रहेगा बच्चे के मुंह में और वो कान में जाने का डर नहीं रहेगा, नहीं तो कान का संक्रमण हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन बहुत उसको मालूम होना चाहिए कि बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा रहेगा तो पूरा दूध उसके गले में से होके सीधा जो है ना पेट में ही जाएगा, मुंह में नहीं भरा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रयास यही करें कि बैठ करके स्तनपान कराएं ताकि उसके कान में किसी तरह का कोई संक्रमण न होने पाए और बच्चा अच्छी तरह से दूध पी सके, उसका पेट भर सके। अब हम ये जानना चाहेंगे कि दूध जो है वो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूर्ण आहार है, अमृत तुल्य है, तो ये दूध बच्चे को पूरी तरह से प्राप्त हो, यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि माँ के स्तनों में इतना दूध बने कि बच्चा अच्छी तरह से अपना पेट भर सके और उससे पौष्टिकता प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको अपने भोजन में, आहार में क्या क्या शामिल करना होगा?
0: जी, जैसा कि पता हम जानते हैं कि यदि माँ स्वस्थ नहीं होगी तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसको माँ की वजह से उसको दूध भी नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। तो इस बात की जानकारी हमको एंटीनेटल पीरियड से ही रखनी पड़ेगी, जब पेट में बच्चा रहता है तभी से हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा पूरे खान पान का, उसको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिले, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिले, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, हरी सब्जियों का मिश्रण हो उसके पास, पर्याप्त मात्रा में दालें मिले जिसकी वजह से उसको प्रोटीन मिले, तो वो स्वस्थ रहेगी। जब वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी वो खुद स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और जब माँ स्वस्थ होगी तो उसको पूरा का पूरा दूध मिलना मिलेगा ही, ये निश्चित है, उसको भरपूर मात्रा में दूध मिलेगा और बच्चे का पेट भरेगा और बच्चे का पोषण होगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो स्तनपान के लिए जो तैयारी है वो गर्भावस्था के काल से ही प्रारंभ हो जाती है, और तभी से हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनको अपने खान पान का ध्यान रखना होता है, उन्हें पूर्ण पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां और सभी विटामिन युक्त जो भी भोजन है वो लेना चाहिए, अपने जो भी चिकित्सक से भी परामर्श लेती हैं उसके अनुसार जो वो डाइट जिस तरह की बताते हैं उस तरह से वो उसको अनुकरण करते हुए लें तो निश्चित रूप से उनको स्तनपान कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके स्तनों में पर्याप्त दूध उतरेगा। और यह भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे 6 माह तक आपने कहा कि केवल स्तनपान कराना है, इस बीच में बच्चे को पानी भी नहीं देना है, कि पानी दिया जा सकता है कभी शिशु को।
0: माँ के दूध में इतना पानी, पर्याप्त पानी होता है जो बच्चे के पोषण के लिए जितना जरूरी है उसकी जरूरत के हिसाब से उतना पानी उपलब्ध होता है। अगर एक्स्ट्रा उसको पानी ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी जी, बहुत सही आपने
0: बताया, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए।
1: हाँ, माँ का दूध ही,
0: माँ का दूध ही पर्याप्त है।
1: जी, तो और हमारी बहनें और किन बातों का ध्यान रखें अपने स्तनपान के दौरान, वे अपने बच्चों को और किस तरह से अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, इस बारे में आप थोड़ा हमारी बहनों
0: बच्चे से। पहले मैं कहना चाहूंगा परिवार के उन लोगों से जो उस माँ

0: और जब बच्चा पूरी तरह से दूध उसका मतलब संतुष्ट बच्चा हो जाएगा, संतुष्ट तब पता चलेगा जब बच्चा अपने आप दूध छोड़ देगा, दूध पीने के बाद वो सो जाएगा, बढ़िया नींद ले लेगा, पेशाब करेगा, इससे ये संकेत हैं अच्छे उसकी ग्रोथ के कि बच्चे को पेट भर रहा है अच्छे से।
1: जी जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय, कराने के पश्चात थोड़ा सा उसको डकार दिलाने का प्रयास करें।
0: जी जी जी, इसको हम बर्पिंग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में।
1: जी, जी।
0: होता क्या है, इसमें बच्चे को दूध पिला के कई लोग लिटा देते हैं, तो जब उसके बाद जब बच्चे को डकार आती है तो वो दूध पुनः उसके मुंह में आ जाता है, मुंह में आने के बाद वो धोखे से कहीं सांस की नली में भी चला जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको कंधे से लगा के हम उसकी पीठ को थपथपाएंगे, तो बच्चे को तब तक थपथपाएंगे जब तक उसको डकार ना आ जाए। डकार आने के बाद हम बच्चे को लिटाएंगे तो ये मुंह में दोबारा दूध आने की संभावना नहीं रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने बातचीत की कि माँ के दूध में क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, किस तरह से माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए, कब तक स्तनपान कराए, और वो अपने भोजन में क्या क्या चीजें शामिल करें, ये सभी बातें हमने विस्तार से की आपसे। कुछ और जानकारी जो हमारी बहनों के लिए आवश्यक है वो हम और आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे मान लिया 6 माह तक तो पूर्ण आहार है दूध, उसे कुछ भी नहीं देना है, लेकिन 6 माह पश्चात कुछ और पूरक आहार बच्चे को देना जरूरी हो जाता है, तो वो किस तरह से देना है माँ को, यह भी आप बताने का कष्ट करें।
0: जी जी जी, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ माँ का दूध देना है।
1: जी,
0: उसके बाद हम सप्लीमेंट्री फूड चालू करेंगे जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, वेजिटेबल्स हैं, वो देंगे, उसके साथ माँ का दूध हम पिलाते रहेंगे बच्चे को।
1: जी,
0: उसके बाद धीरे धीरे 2 साल तक हमको माँ का दूध पिलाना है और साथ में सप्लीमेंट्री फूड चलेगा।
1: जैसे शुरुआत में उसको दाल का पानी भी दे सकते हैं, चावल
0: हम
1: का
0: दाल का पानी दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दाल भी दे सकते
1: दाल
0: हैं,
1: भी दे सकते हैं, और चावल का जो माड़
0: चावल दे
1: सकते,
0: भी
1: दे सकते हैं, चावल
0: मैश किए हुए अच्छे से गले हुए जो है ना,
1: जी हाँ,
0: चावल दे सकते हैं, आलू भी दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीजें जो आराम से वो निगल सके,
1: उसके दांत नहीं होते,
0: चबाना ना पड़े उसको, वो चीजें हम बिल्कुल मैश करके दे सकते हैं,
1: सब्जियों का सूप बना कर।
0: बिल्कुल,
1: तो ये पूरक आहार 6 माह के बाद प्रारंभ करें,
0: 6 माह के बाद प्रारंभ करके 2 साल
1: साथ में स्तनपान कराती रहे,
0: साथ में स्तनपान 2 साल तक कराना है।
1: जी, यानी 2 साल तक स्तनपान करा सकते, इसके पश्चात वो स्तनपान जो है कम बंद कर दे, और पूर्णतः बच्चे को जो पौष्टिक आहार है जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसके शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, वो देना प्रारंभ करें, ताकि बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ अच्छा पनप सके और वो स्वस्थ और हृष्टपुष्ट बन सके।
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने इस विषय पर शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य इतनी विस्तृत जानकारी दी, और हमारी बहनों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से उनको अपना जो दूध है वो बच्चे को पिलाना है, कब तक पिलाना है, और किन बातों का ध्यान रखना है, सभी बातों पर हमने विस्तृत आपसे बातचीत की। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बहनों के साथ साझा की, बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता जिसका विषय था शिशु के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य। भेंट वार्ता में डॉक्टर राम कुमार चौधरी से भेंट कर रही थी श्रीमती हेमलता चौधरी। सखियों, जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, कुछ लोग केवल परिचित बनकर रह जाते हैं, तो कुछ हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। ऐसे ही रिश्ते का नाम है मित्रता। हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो सखियों, आज है अगस्त का प्रथम रविवार और आज है मित्रता दिवस, तो सर्वप्रथम आप सभी बहनों को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यह दोस्ती इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। बहनों, कहा भी गया है, संकट में जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाए। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ दे, बल्कि वह है जो कठिन समय में हमारा हाथ थामे, हमारा हौसला बढ़ाए और हमें सही राह दिखाए। आज के समय में सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मित्रों की पहचान संख्या से नहीं बल्कि उनके व्यवहार, विश्वास और अपनत्व से होती है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है, वह हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। जब हम निराश होते हैं तो वह हमें उम्मीद की नई किरण दिखाता है। सखियों, भारतीय संस्कृति में मित्रता का विशेष स्थान रहा है। भगवान श्री कृष्ण

और सुदामा की मित्रता आज भी आदर्श मानी जाती है। आर्थिक स्थिति अलग होने के बावजूद उनके बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। यह मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते धन दौलत से नहीं बल्कि मन की सच्चाई से बनते हैं। मित्रता केवल समान उम्र के लोगों के बीच ही नहीं होती, माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और जीवन साथी भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। जब परिवार में मित्रता का वातावरण होता है तो संवाद बेहतर होता है, विश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। एक अच्छा मित्र चुनना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है स्वयं भी एक अच्छा मित्र बनना। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा विश्वास करें तो हमें भी ईमानदार, संवेदनशील और सहयोगी बनना होगा। मित्रता में स्वार्थ, ईर्ष्या, झूठ और धोखा कभी स्थान नहीं पाना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वहीं मित्रता लंबे समय तक बनी रहती है। हमारी जिंदगी में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक सच्चा मित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसकी दो बातें, एक मुस्कान या एक छोटा सा सहयोग भी जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। सखियों, माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को अच्छे मित्र चुनने की सीख दें। बच्चों को ऐसे साथियों का चयन करना चाहिए जो उन्हें अच्छी आदतों, अनुशासन, पढ़ाई, खेल और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करें। गलत संगति जीवन की दिशा बदल सकती है, जबकि अच्छी मित्रता सफलता और अच्छे संस्कारों की राह आसान बना देती है। फ्रेंडशिप डे केवल मित्रता का उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह स्वयं से प्रश्न पूछने का अवसर भी है। क्या हम किसी के सच्चे मित्र हैं? क्या हम अपने मित्रों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो यही सच्ची मित्रता की पहचान है। मित्र वही जो राह दिखाए, गिरने पर फिर से उठना सिखाए, सुख दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाए।

0: सखियों, हम सभी पूरे श्रावण महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और कोई कोई तो पूरे महीने के व्रत रखते हैं। शिव जी की पूजा में शिव को बेलपत्र धतूरा चढ़ाया जाता है, साथ ही सात्विक एवं फलाहारी भोग अर्पित किया जाता है। आज हम खाना खजाना में आपके लिए लाए हैं कुछ फलाहारी भोग जो इस श्रावण मास में बनाए जाते हैं। तो पहले हम आपको बता रहे हैं मखाने की खीर बनाने की विधि। तो नोट कीजिए, मखाने की खीर में लगने वाली सामग्री, हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 कप मखाने, 2 चम्मच घी, 4 से 5 चम्मच चीनी, कुछ मेवे बारीक कटे हुए और थोड़ा सा इलायची पाउडर। मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले घी में मखानों को 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। आधे मखानों को हल्का दरदरा पीस लेंगे और आधे अलग रख लेंगे। दूध को उबाल कर थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। अब इसमें हम मखाने मिला देंगे और 10 से 15 मिनट पका लेंगे। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और साथ ही मेवे डाल देंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। लीजिए, मखाने की खीर बनकर तैयार है। सखियों, अब हम आपको बता रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 कप घी, 3/4 कप चीनी, 2 से 2.5 कप पानी, इलायची पाउडर और कुछ कटे हुए मेवे। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने के लिए आटे में घी डालकर उसको सुनहरा होने तक भून लें। अब अलग से पानी और चीनी को मिलाकर उबाल लें। अब इस पानी को धीरे धीरे आटे में मिलाते हुए लगातार चला लें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिला लें। लीजिए, शिव जी को भोग लगाने के लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार है। सखियों, सावन केवल पूजा पाठ के दिन ही नहीं बल्कि सेवा, दया और प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। तो इस श्रावण मास शिव जी की आराधना के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य भी करें, तभी हमारे व्रत सफल होंगे। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दें अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना।

0: चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं राजीव कुमार रावत द्वारा गाया ये सावन का लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए घनश्याम वासवानी द्वारा गाए गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे घनश्याम वासवानी द्वारा गाए गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं राघव चैतन्य की आवाज में फिल्म थप्पड़ से।

अनुराग सैकिया का संगीत शकील आजमी और सना मोहिद्दीन के लिखे बोल, राघव चैतन्य की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म थप्पड़ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म लूडो से, आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

0: प्रीतम का संगीत संदीप श्रीवास्तव के लिखे बोल। लूडो फिल्म से गीत सुना आपने, फिल्म अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर देश भर में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मैनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अभियान में भाग लिया और उन्होंने कहा,
3: पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, ऐसे में हमारे सबके सामने हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुदेव कुटुम्बकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें, नशे से दूरी बहुत है जरूरी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं मंगलवार को वे तप्त पानी के पास स्थित माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध होगी। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। विभाग ने बताया कि ऑनलाइन ई प्रवेश व्यवस्था, दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन और कॉलेजों में हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं से प्रवेश प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग व बागवानी जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को और गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी किया।

5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में खंडवा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वेयर हाउस से मूंग की निकासी अब केवल SDM की लिखित अनुमति से ही हो सकेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में

0: बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
5: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र

0: के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: स्वागत है हमारे सभी बाल श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। मैं हूँ आपकी रेडियो दीदी नेहा जैन। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हमें ये बयां कर रहे हैं कि आप सब आज बहुत खुश हैं। और खुश होना तो बनता ही है, क्योंकि आज है रविवार का दिन यानी छुट्टी का दिन। और साथ ही बाल साथियों, आप सबके खुश होने की एक और खास वजह भी है, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस। सभी बाल मित्रों को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल साथियों, दोस्ती का मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप बैंड बांधना या हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाना, खुशियां बांटना, मदद करना और हमेशा अच्छी बातें सीखना और सिखाना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बाल सभा को। और आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, सुनेंगे आपके बाल मित्रों की कविताएं और जानेंगे कई नई और रोचक बातें जो हमें अच्छा, समझदार और जिम्मेदार बनाने में मदद करेंगी। सुनते हैं सबसे पहले आज फ्रेंडशिप डे पर ये कविता।
3: मेरा नाम पूर्वी जैन है। मैं आज आप सभी को एक दोस्ती पर कविता सुनाने वाली हूँ। दोस्ती का रिश्ता न्यारा है, सब रिश्तों से प्यारा है। दोस्ती का रिश्ता न्यारा है, सब रिश्तों से प्यारा है। हंसी खुशी में साथ निभाएं, हंसी खुशी में साथ निभाएं, दुख में भी हौसला बढ़ाएं। सच्चा दोस्त जो पास हो, हर मुश्किल में खास हो। दूर रहो या पास रहो, दिल में दोस्ती का एहसास रखो। दूर हो या पास हो, हर मुश्किल में दोस्ती का एहसास रखो।
2: बहुत ही सुंदर। अपनी कविता के माध्यम से पूर्वी ने दोस्ती का बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। बाल साथियों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही राह दिखाए, अच्छी आदतें सिखाए और हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाए। और अब सुनते हैं हमारी अगली कविता।
4: मेरा नाम आरव अग्रवाल है और मैं क्लास 5th का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उपहारों की खुशबू लेकर जब तक आ जाते त्योहार, त्योहारों का आना जैसे टप टप माँ का प्यार। लेकिन सोचा तो यह जाना, सभी मनाते हैं त्योहार, सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। फसल खूब लहती है तब खेत मनाते हैं त्योहार, जब लद जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। पानी से भर जाती है तब नदिया का होता त्योहार, ठंड से जब धूप खिलती है तो होता सूरज त्योहार, और अगर मन अड़िक रहे तो पर्वत का होता त्योहार। पूरे दिल से खुशी लुटाते, खिल खिल हंसते खुशी लाते, लेकिन लगते कम त्योहार, अगर बीज इनके भी होते, खूब उगाते हम त्योहार। खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांधे कतार।
5: मेरा नाम दिव्य जैन है, मैं KG 2 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नीले पीले लाल गुलाबी कितने सारे होते फूल, फूलों का राजा एक गुलाब दिखता है एकदम फ्रेशनेस कूल। नेहरू जी को ये प्यारा लगता था, हर पल रहता उनके साथ, बड़ी निराली इसकी बात।
6: मेरा नाम दर्श अग्रवाल है। बिना तेल का बिना दीप का दिन भर एक दिया जलता है, और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। नवमंडल का सूर्य है वह, कड़कड़ में उज्जवल करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। चमकीली किरणों से अपना नए सवेरा चमकाता है, उसकी चमकीली किरणें से तन मन जीवन का नाता है।
7: मेरा नाम जानवी जैन है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। एक डाल पर बैठा बंदर भीग रहा पानी के अंदर, ठटर ठटर कांप रहा था, कहाँ छुप हुए झांक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा कहाँ नहीं था तुमने मां, अब पानी में भीग रहे हो, अच्छी अच्छी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चू चू चू चू चिड़िया रोई डाल पर वो भी सोई।
2: बाल साथियों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल साथियों, और अब सुनते हैं हमारी अगली कविता।
1: मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। जी करता है मैं उड़ जाऊँ बनकर एरोप्लेन, कभी ना फिर मैं नीचे आऊँ हवा में खेलूँ खेल, सूरज से मैं हाथ मिलाऊँ चंदा को स्टाइल दिखाऊँ, यूके और कनाडा जाऊँ घूमूँ मैं स्पेस, आसमान को मैं छू जाऊँ धरती को टाटा कर जाऊँ, जोर जोर से मैं चिल्लाऊँ बनूँ मैं एरोप्लेन, एरोप्लेन से सब मुझे बुलाएं मुझको भी पल लग जाए ये सपना सच हो जाए बनूँ मैं एरोप्लेन।
2: मेरा नाम मौलिक है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नत सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली।

0: रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: मेरा नाम समीक्षा जैन है। एक कविता माँ के नाम। माँ तू एक पेड़ है, तेरी छाँव में मैं रहूँ उम्र भर, तेरी डाली से निकला हूँ मैं, तुझी से जिंदा हूँ मैं। कभी सूख जाऊँ पत्तों सा, फिर भी टूट कर तेरी गोद मैं रहूँ। धूप हो बारिश तुझसे लिपट जाऊँ मैं, हवा जब मुझे उड़ा ले जाए, तुझी में चिपक जाऊँ मैं, तेरी जड़ में समा जाऊँ मैं। तुझसे शुरू हूँ तुझी पर खत्म हो जाओ मैं, तेरी आंचल सा फैला है बिस्तर तेरा, मुझमें तू है से है पूरा संसार मेरा। धन्यवाद।
2: मेरा नाम नायरा है, मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आसमान से चमकी बिजली, छतरी लेकर मीना निकली, काले काले बादल आए, चाहे जितना जल बरसाए, धूप बारिश में हमें बचाए, छतरी सबके मन को भाए। धन्यवाद।
3: मेरा नाम खुशी है, मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान, दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान, सदा दूसरों के हित देखे हम, बन जाए वो इंसान।
4: मेरा नाम रितिका है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी मोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दिन मन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ दीन का बड़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो।
5: मेरा नाम है प्रांशी, मैं कविता सुना रही हूँ माँ तुम कितनी।

0: ही बोलता लेकिन घर।
1: मेरा नाम देवांशी है, मैं आपके सामने एक पोयम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों मैं हूँ चिड़िया रानी, करती रहती हूँ मनमानी, उड़ जाती मैं आसमान में, कभी उतरती इसी झील में, इसमें रहती मछली रा बनती है वह बड़ी से, मुझे देखो और डर जाती है, जल के भीतर छिप जाती है। तुमने जो दाने बिखराए उनको इसमत छुली ने खा, मैं डाली पर चहक रही हूँ, सुंदरता को निरख रही हूँ। थैंक यू।
2: बाल श्रोता, अगर खेलते वक्त आपके किसी दोस्त को चोट लग जाए तो जो सबसे पहली और तुरंत की जाने वाली मदद होती है, इसे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहते हैं। बाल साथियों, याद रखिए कि प्राथमिक उपचार का मतलब डॉक्टर बनना नहीं है, इसका मतलब है जब तक बड़े या डॉक्टर ना आ जाए तब तक समझदारी से अपने दोस्त की सुरक्षित मदद करना। खेलते वक्त कभी आपके किसी दोस्त को अगर चोट लग जाए तो कभी भी घबराइए नहीं, घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। बाल साथियों, इसी समझदारी का नाम है प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार का मतलब है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति की सुरक्षित और सही तरीके से की गई शुरुआती मदद। बाल साथियों, आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। बाल साथियों, अगर किसी दोस्त को चोट लग गई तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है और किसी बड़े व्यक्ति को, माता पिता को, आपके सर को, मैडम को या आपके आसपास के जो भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको तुरंत बुलाइए। यदि उसे हल्की चोट लगी है

तो उसे आराम से बैठने में मदद करिए। यदि हाथ या घुटना छिल गया है तो किसी बड़े की मदद से साफ पानी से घाव को साफ करें। अगर उसे ज्यादा चोट लग गई है तो तुरंत किसी बड़े को बुलाएं और डॉक्टर की सहायता दिलाएं। अगर आपका दोस्त चलने में असमर्थ है तो उसे एक सुरक्षित जगह पर बैठा दें या उसे लिटाने में मदद करें। और इस बात का भी ध्यान रखें बाल साथियों कि आपके घर में, स्कूल में या खेल के मैदान में आप जहां भी खेल रहे हो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स कहां पर रखा है इसकी जानकारी हमेशा रखें। बाल साथियों याद रखिए, समझदारी, शांति और समय पर बड़े लोगों को बुलाना भी एक बहुत बड़ी मदद होती है और यही एक अच्छे और जिम्मेदार बच्चे की पहचान होती है। बाल साथियों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपीता कपड़ा।
0: कपड़ा

बाल साथी, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम बाल सभा द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल। बाल साथियों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ प्रेम और अपनापन बनाए रखें, रोज थोड़ा समय खेलकूद के लिए निकालें, अच्छी किताबें पढ़िए, नई नई बातें सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाल साथियों, इसी प्यारे संदेश के साथ आपकी रेडियो दीदी नेहा जैन आपसे विदा लेती है। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर देशभर में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मेनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये मिलेंगे। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। दतिया

0: विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल यानी 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 पर प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर श्रोताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कंवरजी सिंह। सुर्खियों में प्रसारित होगा रात 8 बजे और 8:15 पर सुने बैतूल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रस्तुतकर्ता है प्रवीण चौरे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में आज रात 10 बजे सुने सुधाकर देवले का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं राजीव कुमार रावत की आवाज में सावन गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है घनश्याम वासवानी द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे घनश्याम वासवानी द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

भाषा और साहित्य की जागृति राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग की पहली मंजिल है। पुरुषोत्तम दास टंडन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है।

अनुमलिका संगीत समीर के लिखे बोल प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मुझे कुछ कहना है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में, साथ हैं कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म का नाम कुछ ना कहो।

शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुनाती है फिल्म कुछ ना कहो से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा से।

विशाल का संगीत अब्बास टायर वाला के लिखे बोल उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत सुना आपने फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण की आवाज में, साथ है श्रेया घोषाल, फिल्म का नाम कृष।

राजेश रोशन का संगीत नासिर फराज के लिखे बोल, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म क्रिश थे। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक की आवाज़ में, साथ है सोनू निगम। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में अपने गीत सुना, कभी खुशी कभी गम से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की, जो 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं का तन से और मन से स्वस्थ रहना और आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मैनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो गई है। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में गायक किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा, जिसके चलते भारी बारिश की संभावना है। और सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण तव्हां सभिनी जे पसंदीदा हिन कार्यक्रम में मां मनोज सोनी पंजवाणी पारां तव्हां सभिनी खे सिक भरी नमस्ते। दोस्तों अगस्त महीनो चालू थी वियो आहे ऐं अगस्त माना यारनि जो महीनो, दोस्तनि जो महीनो। अगस्त महीने जो पहिरियों आर्तवार फ्रेंडशिप डे जे रूप में मल्हाईंदा आहियूं जेको अॼु आहे। ऐं साथियों इन फ्रेंडशिप डे ते भॻवान दर इहा ई प्रार्थना आहे त तव्हांजी ऐं असांजी हीअ सुहिणी यारी ईअं ई बणी रहे, असांजो प्रेम ईअं ई बणियो रहे। अगस्त सां गॾु ही शुरू थियो आहे सावण जो महीनो ऐं सावण महीनो चवायो वेंदो आहे भॻवान भोले भंडारी भॻवान शिव शंकर जो। त अचो त अॼु जे कार्यक्रम जी शुरूआति कयूं था भॻवान शंकर जे हिन भॼन सां।

0: बोल शंकर भगवान की जय।
1: भगवान शंकर जो ही भजन गायो ऐं लिखियो हो आज़ाद सूफ़ी संगीत थियो राम चरण दास जो। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॼाणुनि पासे ऐं अॼु जी जेका ॼाण आहे सा आहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हर साल 7 अगस्त ते इहो ॾींहुं असां मल्हाईंदा आहियूं। इहो ॾींहुं मुल्क जे हथकरघा बुनकर समुदाय खे सम्मानित करण लाइ स्वदेशी विरासत खे संभालण ऐं राष्ट्र जे विकास में इन उद्योग जे योगदान खे ॾेखारणु इन ॾींहं जो ख़ासि मक़सदु आहे। साथियो, हिन ॾींहं जे ऐतिहासिक महत्व ते नज़र विझूं त सन 1905 7 अगस्त ते कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जी शुरूआति कई वई हुई, जंहिंमें ब्रिटिश शयुनि जो बहिष्कार करे मुल्क में ठहियल हथकरघा ऐं स्वदेशी उद्योगनि खे वाधारो ॾिनो वियो हो। इन ही ऐतिहासिक घटना जी याद में भारत सरकार सन 2015 में 7 अगस्त के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कई। इन जो मुख्य उद्देश्य बुनकरन के सम्मान दियण, उनन जो आर्थिक विकास करण ऐं इन उद्योग से जुड़ियल जेके महिलाओं आन माताओं भेनरू आन उनन के सशक्तिकरण करण आहे। इहा त हुई ॼाण 7 अगस्त जी। इन खां पोइ 8 अगस्त इन जो बि पंहिंजो ही ऐतिहासिक महत्व आहे। 8 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधीअ जे नेतृत्व में शुरू थियो हो भारत छोड़ो आंदोलन। हिन जो ख़ासि मक़सदु भारत में ब्रिटिश शासन खे तुरंत ख़तमु करणु। 8 अगस्त सन 1942 बॉम्बे जे ग्वालिया टैंक मैदान, जंहिंखे अगस्त क्रांति मैदान बि चवंदा आहियूं, इतां खां इन जी शुरूआति थी, जंहिंमें महात्मा गांधी पारां करो या मरो जो नारो ॾिनो वियो ऐं भारत छोड़ो जो नारो ॾिनो समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली। क्रिप्स मिशन जी विफलता ऐं द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयनि जी सहमतीअ जे बिना ही उन्हनि खे हिन युद्ध में घसीटण जे करे इन आंदोलन जी शुरूआति कई वई। साथियो, 8 अगस्त 1942 ते आंदोलन जी घोषणा कई वई ऐं अॻिले ही ॾींहुं 9 अगस्त 1942 ते महात्मा गांधी ऐं उन सां गॾु जेके बि वॾा नेता हुआ उन्हनि सभिनी जी गिरफ़्तारी कई वई। पर उन खां पोइ बि इहो आंदोलन पंहिंजे स्तर ते हलंदो रहियो, बिना नेतृत्व जे बि इहो आंदोलन पंहिंजो कमु कंदो रहियो। इहा इन आंदोलन जी हिकु ख़ासियत हुई। सतियो, ॻाल्हि पई हले सावण जी, त अचो सावण जी हिन मस्त बहार में ॿुधूं था मस्तीअ सां झूमियल ही गीत।

0: ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे समय आहे अॼु जी वार्ता जो, जंहिंजो मौज़ू आहे पर्यावरण संरक्षण अॼु जी ज़रूरत। ऐं अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में वार्ताकार आहिनि भारती ठाकुर जी। अचो त ॿुधूं था भारती ठाकुर जी खां अॼु जी वार्ता।
1: जय झूलेलाल साथियों, असांजी वार्ता जो अॼु जो विषय आहे पर्यावरण संरक्षण अॼु जी ज़रूरत। अॼु जे वक़्त में पर्या

पर्यावरण संरक्षण एक वड़ो मुद्दो आहे। असांजे ग्रहन जी स्थिति ॾींहों को ॾींहुं खराब थींदी पई थी वञे, जंहिंजी जिम्मेदार आहिनि असांजी आदतूं ऐं असांजो व्यवहार। वधंदड़ प्रदूषण, वणनि जी कटाई ऐं जलवायु परिवर्तन, जीअं तापमान जो वधण, सुनामी, गोड ऐं सुक, धरतीअ जे अस्तित्व जे लाइ खतरो बणी चुका आहिनि। स्वच्छ हवा, पाणी ऐं जलवायु परिवर्तन जे दुष्परिणामनि सां बचण लाइ वृक्षारोपण करणु ऐं प्लास्टिक जो उपयोग बंदि करणु तमामु ज़रूरी आहे। पर्यावरण संरक्षण जी असांखे छा ज़रूरत आहे, इहो ज़रूरी छो आहे, इन जी ॼाण हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। पहिरियों, असांजी सिहत सुठी रहे, असां स्वस्थ रहूं, जंहिंजे लाइ हवा पाणीअ जो शुद्ध स्वच्छ हुजणु ज़रूरी आहे। प्रदूषित हवा ऐं ख़राब पाणी असांजे शरीर में गंभीर नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, छो त पाणीअ सां ई असां रोज़मर्रा जा कम कंदा आहियूं, जीअं रोटी पचाइण, साफ़ सफ़ाई ऐं पीअण जे लाइ पाणीअ जो साफ़ हुजणु ज़रूरी आहे। असां पाणीअ खां सिवा हिन जीवन जी कल्पना बि नथा करे सघूं, माना पर्यावरण जो संरक्षण असांजे स्वास्थ्य जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। ॿियो आहे जलवायु परिवर्तन, माना क्लाइमेट चेंज। वधंदड़ तापमान खे रोकणु, ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं असमय प्राकृतिक आपदाउनि खे रोकण जे लाइ बि हिन पृथ्वीअ जो संरक्षण ज़रूरी आहे। टियों आहे जैविक विविधता जो संरक्षण, माना पेड़ पौधा ऐं वन्य जीवन खे लुप्त थियण खां बचाइणो आहे त असांखे प्रकृतिअ जी रक्षा करणु ज़रूरी आहे। चौथों आहे संसाधन जी सुरक्षा, पाणी, जंगल ऐं खनिज जहिड़े प्राकृतिक संसाधननि जो सही उपयोग सुनिश्चित करण जे लाइ बि पर्यावरण संरक्षण ज़रूरी आहे। साथियों, पर्यावरण हिकु अहिड़ी चादर आहे जेका असां खां ऐं असां उन खां जुड़ियल आहियूं, ऐं असां चाहियूं न त इन खां अलॻि न थी सघंदासीं। प्रकृति ऐं पर्यावरण हिकु ॿिए जो अभिन्न हिसो आहिनि। को बि माण्हू या वस्तु, चाहे हूअ सजीव हुजे या निर्जीव, पर्यावरण जे अंतर्गत ही ईंदा आहिनि। पर्यावरण सां असांखे तमामु कुझु मिलंदो आहे, पर उन जे बदिले में असां छा पैदा कयूं? असां पंहिंजी स्वार्थ सिद्धीअ जे लाइ हिन पर्यावरण ऐं इन जी अमूल्य संपदा जो दुरुपयोग करे रहिया आहियूं। पर्यावरण माना जंहिं वातावरण में असां रहंदा आहियूं, असांजे आसे पासे में मौजूदु हर हिकु शइ, जीव जंतु, पखी, पेड़ पौधा, सभिनीनि खां मिली करे पर्यावरण जी रचना थींदी आहे। असां सभिनीनि जो हिन पर्यावरण सां मजबूत रिश्तो आहे ऐं हमेशह रहंदो। जॾहिं असां प्रकृतिअ जी सूंहं खे ॾिसंदा

चाहे सर्वनाश खे नींड ॾेई रहिया आहिनि। अॼु असां प्रगतीअ जे नाले सां नया नया आविष्कार त करे रहिया आहियूं, वणनि ऐं पहाड़नि खे कटे होटल्स, फैक्ट्री ऐं वॾी वॾी बिल्डिंगूं ठाहे रहिया आहियूं। असां सभिनीनि खे पर्यावरण ऐं प्रकृतीअ जे संरक्षण जे लाइ जागरूक थियणो पवंदो, न त हिन प्रकृतीअ सां गॾु सॼी मानव जातीअ जो विनाश थी वेंदो। माण्हू गांवनि खां शहर जे पासे पलायन करण लॻा, वणनि ऐं जंगलनि जो कटण शुरू थी वियो। माण्हू अॼु जीव जंतुनि खे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ मारण लॻा आहिनि, जंहिंजे करे चारों तरफ़ प्रदूषण वधण लॻो आहे, जंहिंसां पर्यावरण खे तमामु नुक़सान पहुचण लॻो। जंहिं प्रकृतीअ असांखे आसरो ॾिनो, इन्हीअ खे नष्ट करण लॻा आहियूं असां, जंहिंजे करे प्रकृतीअ जो संतुलन बिगड़ंदो वियो। प्राचीन काल खां ई पर्यावरण जो ॾाढो महत्व रहियो आहे। असुल में प्रकृतीअ जो संरक्षण ही उन जी पूजा आहे। असांजे भारत देश में पर्वत, नदियूं, हवा, आग, ग्रह नक्षत्र, पेड़ पौधा, इन्हनि सभिनीनि खे मानवीय संबंधनि सां जोड़ियो वियो आहे। वणनि खे संतान स्वरूप ऐं नदियुनि खे माता स्वरूप में पूजियो वेंदो आहे। अॼु असां पर्यावरण संरक्षण जे महत्व खे नथा समझूं, जंहिंसां मानव सभ्यता जो अंत परे कान रहियो आहे। हाणे असां वीचार कयूं त पर्यावरण संरक्षण जा उपाय छा थी सघंदा आहिनि ऐं असां सभु मिली करे हिन पर्यावरण ऐं धरती माता जी रक्षा कीअं करे सघंदासीं। सभिनीनि खां पहिरीं पर्यावरण संरक्षण जे लाइ हिन पृथ्वीअ खे प्रदूषण मुक्त करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जे करे प्रदूषण वधंदो थो वञे, जंहिंजे करे जनसंख्या वृद्धिअ ते नियंत्रण करणु ज़रूरी आहे। ओजोन परत जो क्षरण हुजण सां धरतीअ जो तापमान वधंदो पए थो वञे, ध्रुवनि ते ग्लेशियर्स पिघलंदा वेठा वञनि। माना हिन जो संरक्षण असांजी नैतिक ज़िम्मेदारी बि आहे। प्रदूषण जा मुख्य रूप सां चार प्रकार आहिनि। पहिरियों वायु प्रदूषण, ॿियो जल प्रदूषण, टियों ध्वनि प्रदूषण ऐं चौथों आहे रासायनिक प्रदूषण। हवा में अलॻि अलॻि गैस हिक सही मात्रा में हूंदी आहिनि। इंसान ऐं जानवर ऑक्सीजन वठंदा आहिनि ऐं कार्बन डाइऑक्साइड छॾींदा आहिनि। सावा वण उस में कार्बन डाइऑक्साइड वठंदा आहिनि ऐं ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि, जंहिंसां हवा जो संतुलन बणियो रहंदो आहे। पर असां इंसान वणनि खे कटे, गाॾियूं हलाए ऐं कारखाना लॻाए हवा जे संतुलन खे बिगाड़े रहिया आहियूं, जंहिंसां हवा ख़राब थी वेंदी आहे ऐं इहो ही वायु प्रदूषण चवाराईंदो आहे। ॿियो आहे जलवायु प्रदूषण। पाणी सभिनी माण्हुनि जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। पौधा बि पाणीअ सां ही पंहिंजो भोजन वठंदा आहिनि। पाणीअ में कुझु खनिज ऐं गैस मिलियल हूंदियूं आहिनि, जेके ज़रूरी बि हूंदियूं आहिनि। पर जॾहिं पाणीअ में किन कचिरो ऐं रसायन कठो थी वेंदो आहे, त उहो पाणी असांजे लाइ नुक़सानदाई थी पवंदो आहे, जंहिंखे जल प्रदूषण चइबो आहे। टियों आहे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अॼु जे युग में ॾाढी वॾी परेशानी थी वई आहे। गाॾियुनि जो धुओं, ट्रेन, हवाई जहाज़, कारखाननि जी मशीनूं ऐं लाउड स्पीकर ॾाढी तेज़ आवाज़ कंदा आहिनि। तेज़ आवाज़ सां कननि जे ॿुधण जी शक्ति घटिजंदी वेंदी आहे, कमु करण जी क्षमता बि घटि थी वेंदी आहे ऐं निंड बि ख़राब थींदी आहे, जंहिंसां कई बीमारियूं घर करे वेंदी आहिनि ऐं मानसिक परेशानियूं घेरे वठंदियूं आहिनि। इहो ई ध्वनि प्रदूषण चवाराईंदो आहे। चौथों आहे रासायनिक प्रदूषण। कारखाननि मां निकिरण वारो ख़राब पाणी, खेतनि में इस्तेमालु थियण वारा कीटनाशक दवाऊं ऐं रासायनिक खाधूं बि प्रदूषण फैलाईंदा आहिनि। इहे पदार्थ पाणीअ सां गॾु वही करे नदियुनि, तालाबनि ऐं समुंड में पहुची वेंदा आहिनि, जंहिंसां इंसाननि, जानवरनि ऐं पाणीअ में रहण वारे जीवन खे तमामु वधीक नुक़सान थींदो आहे, जेको रासायनिक प्रदूषण चवाराईंदो आहे। साथियो, हिन वार्ता जो सार इहो आहे कि असांखे मिली करे इन प्रकृति ऐं पृथ्वीअ जी रक्षा करणु ज़रूरी आहे।

0: ऐं सरकार जी कोशिशुनि सां गॾो गॾु असांजी बि हीअ ज़िमेदारी आहे कि असां वृक्षारोपण कयूं, नदियूं तालाबनि खे साफ़ स्वच्छ रखूं, प्लास्टिक जो उपयोग बंदि करे पेपर बैग्स जो इस्तेमालु कयूं, पाणीअ खे बर्बादु थियण सां रोकियूं, रासायनिक ऐं कीटनाशक जो उपयोग बंदि करे जैविक खाद जो उपयोग कयूं, जनसंख्या वृद्धिअ ते रोक लॻायूं, तॾहिं असां सभु इन प्रकृतिअ जो आनंद वठी सघंदासीं। हाणे इजाज़त ॾींदा भारती ठकुर खे, जय झूलेलाल।
1: पर्यावरण असांजे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे ऐं इन जो संरक्षण कीअं कजे, इहा वार्ता ॿुधी रहिया हुयासीं भारती ठाकुर जी खां। तमामु सुहिणी ऐं जानकारी पूर्ण वार्ता। हाणे साथियो, असांजे इष्ट देव झूलण साईं जो चालीहो साहिबु हली रहियो आहे, छो न मिली करे झूलेलाल जे हिन भॼन सां धूम मचायूं, ख़ुशियूं मनायूं।

झूलण सां आयो ही गीत गायो हो राम पंजवाणी भगवंती नावाणी ए साथियों साथियों झूलण साई जे हन धूम मचाईंदड़ गीत सां गड़ ही अज जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थियो। इजाजत दियो पहेंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणी के वरी मिलंदासे। सब जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हे मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम, मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
4: बाजू बाबू समझो इशारे।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 18वीं कड़ी।
5: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 18वां भाग। अब तक आपने सुना त्रिलोचन दोबारा अपनी सत्या दीदी को खोजने उज्जैनी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसिका ही उनकी सत्या दीदी हैं। यहाँ वे राजकीय उत्सव में रानी पिंगला के पार्श्व में खड़ी वैसिका को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। उधर चारुमित्रा राजा भर्तृहरि को उज्जैनी वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। अब आगे

0: पिंगलेश्वर द्वार के प्रहरियों ने धूल के गुबार में घिरे अश्वरोही रक्षकों के बीच में आते हुए दो रथों को देखा। उनकी मंद गति बता रही थी कि वो कहीं दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। निकट आने पर रक्षकों की एक टुकड़ी उनके साथ आती दिखाई दी। कुछ समय में आगे की रथ की ध्वजा स्पष्ट हुई, जिस पर दो नृत्य रथ मयूर चित्रित थे। मार्ग इस समय धूलाच्छादित होने लगता है और धुंधलका भी। पश्चिम के आकाश में एक मेघ खंड ने अस्तमान सूर्य को ढक लिया था, इसलिए सांध्य प्रकाश भी छन कर आ रहा था। एक अश्वरोही रथ के पास से द्वार की ओर आगे बढ़ा।
1: महामती देवी चारुमित्रा नगर प्रवेश की अनुमति चाहती हैं।
2: पिंगलेश्वर द्वार का यह प्रदान विनयपाल देवी चारुमित्रा का महिमामयी महाकाल नगरी में हार्दिक स्वागत करता है। देवी कहाँ पहुंचना चाहेंगी?
3: जाना तो हमें श्रेष्ठी नागदत्त के यहाँ है। देवी वसुंधरा को सूचना दे दी गई है।
1: हमारी स्वामिनी वसुंधरा देवी का आग्रह है कि देवी चारुमित्रा की उपस्थिति 2-4 दिन गोपनीय रहे, उनके आगमन को प्रचारित ना किया जाए।
2: अच्छा हुआ कि आपने सीधे मुझसे भेंट की और स्वयं मैंने ही आपका स्वागत किया। कोई और यहाँ नहीं है, आप जानते हैं बात फैलते कितनी देर लगती है, किंतु इस समय इनका आगमन उत्सव के समय तो आई ही नहीं थी। पूरा राज्य इनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
1: क्या पता अब महारानी को पुत्र जन्म की बधाई देने आई हूँ।
2: संभव है, किंतु नरेश तो अभी प्रवास में ही है।
1: हमें इन सबसे क्या लेना देना, ये जाने और इनका काम। ये रखिए आप। हाँ
2: ये स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मुद्रा ग्रहण करने की बात इधर उधर चली गई तो मुझ अकिंचन की तो आजीविका ही संकट में पड़ जाएगी।
1: क्या कहते हैं आप, कितना पुराना व्यवहार है अपने बीच।
2: सो तो है, तभी तो मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ।
1: आप तो हमारे अपने हैं। चलो बंधुओं। अरे यहाँ तो देवी चारुमित्रा का स्वागत करने देवी वसुंधरा स्वयं ही पुत्र सहित मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं।
4: आ जाओ चारु, महामात्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: मेरी अथवा उज्जैनी नरेश की?
0: तभी देवी चारुमित्रा के रथ से राजा भर्तृहरि भी उतरते हैं। उनका वेश राजसी या अवधूत का न होकर वणिकों जैसा है।
5: अरे आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई महाराज, मुझे ही बिना बताए चले गए थे। ये तो सोचा होता कि इस वृद्ध के झुके हुए शिलत कांधे पर आपके विश्रुत कुल की ख्याति के अनुरूप इस पवित्र राज्य का भार वहन कर पाएंगे। मैं बहुत थक गया हूं महाराज, अब आप ही संभालें अपना राजछत्र और शास्ती।
6: अरे अरे क्या करते हैं महामात्य, आप आदरणीय

0: और पूज्य हैं, मेरे लिए ही नहीं, राज्य के लिए भी और संपूर्ण प्रजा के लिए भी। आपका स्थान वहां नहीं, इस पीठी पर है, बैठिए।
1: देव, ये पीठी आपके लिए है।
0: पीठी उसकी होती है आर्य, जो उसकी गरिमा बनाए रखे, बचाए रखे। आपने तो मेरी अनुपस्थिति में अवंती के राज्य को वर्ष भर से संभाला है। आपकी निष्ठा, शील, निर्वाह और उपकार प्रशंसनीय है आर्य, उसका प्रतिदान तो संभव ही नहीं।
1: देव, अपने आगमन को आपने इतना गोपनीय क्यों रखा? यह अवंतिका कब से आपके दर्शन पाने को आतुर थी।
0: मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं महामात्य, जैसे यही कि उज्जैनी का शासन भर्तृहरि के बिना भी तो चल सकता था। जब भर्तृहरि नहीं था तब भी उज्जैनी थी, जब भर्तृहरि नहीं होगा तब भी अवंती का राज्य रहेगा।
1: निश्चय ही उज्जैनी के अतीत और भविष्य का होना भर्तृहरि पर आश्रित नहीं है, किंतु उज्जैनी का वर्तमान तो पूरी तरह भर्तृहरि से बंधा हुआ है महाराज, कार्य और कारण दोनों ही दृष्टियों से। अवंती का राज्य राजपुत्रों की क्रीड़ा का कंटुक नहीं है महाराज, ये महाकाल का प्रसाद है जिसे धारण करना होता है विनय से, शील से, पुरुषार्थ से।
0: आप राजा के कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं महामात्य, किंतु यदि कोई साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहे
1: तो उसे किसी साधारण मां के गर्भ से जन्म लेना होगा महाराज।
0: लेकिन जन्म लेना किसी के वश में नहीं है महामात्य।
1: यही मैं कह रहा हूं, नरेश के रूप में आपका चयन महाकाल ने किया है, तभी तो आपको महाराज गर्दभिल्ल की राज महिषी की कोख से जन्म मिला।
0: उसी कोख से कुमार विक्रम ने भी जन्म लिया है।
1: हाँ, और वो उज्जैनी का राजदंड संभालने के लिए आतुर भी है। महाराज, आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, विश्राम कर लें, मैं बाद में आता हूं। चारुमित्रा का नगर आगमन अधिक समय तक छुपा नहीं रहेगा, कल देवी वसुंधरा के द्वार पर भीड़ लगने लगेगी। देवी वसुंधरा राज्य की सम्मानीय और सरल महिला हैं, राज्य के प्रति उनकी निष्ठा समर्पित है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई असुविधा या चिंता हो। चारुमित्रा की व्यवस्था अन्यंत्र करनी होगी।
0: आर्य, चारुमित्रा को राजमहालय के अधिवास में भी तो ठहराया जा सकता है।
1: देव, इसके लिए महादेवी पिंगला से अनुमति लेनी होगी। आप चिंता ना करें, समुचित प्रबंध हो जाएगा। देव, प्रश्न पूछने की बलवती इच्छा है।
0: पूछिए।
1: बिना कुछ कहे सुने आप अचानक क्यों चले गए थे? इतने दिन कहां रहे? आपको लौटाने के लिए हमने इतने प्रयास किए, क्या कहीं से आपको पुत्र जन्म की सूचना भी नहीं मिली? आपकी अनुपस्थिति में अवंतिका का इतना बड़ा उत्सव फीका रह गया, मात्र एक औपचारिकता। मैं सोचता था कि आप सबसे पहले महादेवी पिंगला के बारे में पूछेंगे, पुत्र को देखने और गोद में लेने की उत्सुकता प्रकट करेंगे, किंतु
0: ये सब मैं आपसे कहूंगा, पूछूंगा भी, आपके सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर भी दूंगा महामात्य, पर समय आने पर, अभी नहीं। अभी तो महाकाल को माथा नवाकर उज्जैनी को देखना चाहता हूं, फिर कुछ और।
1: महाराज, उज्जैनी अब उतनी निरापद नहीं रह गई है, आपके ना होने से दंड भय भी नहीं रहा और अपराधी अधिक सक्रिय हो गए हैं, राजपुरुष ही बाहुबलियों को संरक्षण देने लगे हैं। अब आप आ गए हैं, देखिए कि ये वृत्त पूर्ण रथ कैसे राजचक्र को अपनी स्वाभाविक गति में लाता है।
0: महामात्य, आप अपने को बार बार वृद्ध न कहा करें। आपकी दृढ़ता और

0: क्रियाशीलता पर किसी भी युवक को ईर्ष्या हो सकती है। सर्वप्रथम मैं देवादिदेव महाकाल के सम्मुख मस्तक टेकने जाना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे ना?
1: महाराज, इन दिनों न जाने कितनी आंखें मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीमंतों के गुप्तचर मेरी हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं। मैं अपने दो अति विश्वस्त अनुचरों को आपके साथ भेजूंगा। उन्हें यहां कोई नहीं पहचानता है, वो आपकी ही भांति वणिक भेष में होंगे।
2: राजा भर्तहरि से दिशा ज्ञान लेकर महामात्य रक्षक दल को साथ लेकर नीलगंगा के बस्ती घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। नदी पार करके आगे महामात्य और पीछे सैनिक चलते हुए एक झोपड़ी के द्वार पर आ पहुंचते हैं।
1: कोई है यहां? अनिल,
3: पूज्यवर को सेवक का प्रणाम।
1: अरे अरे,
3: आप क्यों पधारे? बुलवा लेती सेवक को।
1: ये किशोर वही वीर है ना जो 20
4: तो आपके खड़े होने लायक स्थान भी नहीं है।
1: सौभाग्यवती रहो पुत्री, मैं अनिरुद्ध को लेने आया हूं। एकाएक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आ गया है।
4: आदेश करें, हम किसी काम आ सके ये हमारा सौभाग्य होगा।
1: अंतापुर में कोई असुविधा तो नहीं है?
4: देवी वैसिका मेरा हर समय ध्यान रखती हैं। उन्होंने मुझे महादेवी के कक्ष की झाड़ पोछ का काम सौंपा है। इस तरह सब कुछ परीक्षित हो जाता है। यूं मैं दिन भर द्वार के आसपास ही रहती हूँ।
1: और तुम्हारी सुरिका?
4: अंतःपुर में वही मेरी संगनी है हर समय।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, फिर चले अनिरुद्ध। बेटी, हम निकलते हैं, कुछ पूछना चाहोगी?
4: ये धृष्टता नहीं करूंगी, आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु
1: आज उज्जैनी आ पहुंचे हैं, किंतु उनका आगमन अभी गोपनीय है। अनिरुद्ध उनकी सुरक्षा में रहेगा।
4: महाराज,
2: को अपने साथ लेकर महामात्य देवी वसुंधरा के आवास पर महाराजा से भेंट करने की प्रत्याशा में पहुंचे। कक्ष में देवी वसुंधरा, उनके पुत्र और देवी चारुमित्रा के अतिरिक्त एक व्यापारी और उपस्थित था। महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़े। महामात्य के स्वागत में ये सभी उठ खड़े हुए। महामात्य की उत्सुक दृष्टि महाराज को यह वहां खोज रही थी और साथ ही औपचारिकता का वो निर्वाह भी कर रहे थे।
1: महाकाल की नगरी अवंती राज्य की राजधानी में कला प्रवीण विदुषी देवी चारुमित्रा का स्वागत है।
5: देव की ख्याति सुनी थी, आज दर्शन पाकर कृतकृत्य हुई।
6: सुना है देवी चारुमित्रा कवि भी हैं? क्या ही सुखद हो कि इसे देखने और सुनने का अनुभव हमें काव्य के माध्यम से बताएं।
7: अद्भुत होगा यह, आप क्या कहती हैं मातुश्री? देवी चारुमित्रा स्वीकार करें तो?
5: आर्य किसी चिंता में है?
1: देवी का अनुमान किसी सीमा तक ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि आप सभी के साथ यहां महाराज के भी दर्शन होंगे, और वो यहां नहीं है, मैं यही सोच रहा था। आप इसे चिंता भी कह सकते हैं।
7: अर्थात महामात्य असहमत नहीं है। देवी चारुमित्रा को सुने, इस स्थिति पर वह क्या कहती हैं?
5: दूरे पिश्रुत्वा भवती कीर्तिम करणेव तृप्ता न तु चक्षुसी में तयोर विवादम परिहर्तु कामा समागतो हम तव दर्शनाये।
8: साधु, साधु, साधु, साधु।
7: कृपा कर अर्थ भी स्पष्ट करें।
2: श्रेष्ठ पुत्र ने पद का अर्थ जानना चाहा, तो महामात्य की दृष्टि कक्ष में उपस्थित व्यवसायी पर जा ठहरी।
1: महानुभाव, आपसे मेरी ये प्रथम भेंट है। देवी वसुंधरा ने भी परिचय नहीं करवाया, क्या आप

0: देवी चारुमित्रा के साथ पधारे हैं?
1: कदाचित मेरी उपस्थिति महामात्य को रुचिकर नहीं लगी।
0: उपस्थित तो आप हैं ही, देवी चारुमित्रा से आपका आग्रह आपकी काव्य मर्मज्ञता को भी व्यक्त करता है, अतः उचित ये होगा कि आप ही इन पंक्तियों पर प्रकाश डालें।
1: अर्थ यही है महामात्य कि आपका यश और ख्याति दूर से सुनकर कान तो तृप्त हो गए, नेत्र नहीं। इस विवाद का परिहार करने की इच्छा से मैं तुम्हें देखने आई हूं।
0: पद अच्छा है, अर्थ भी अच्छा है, किंतु इससे भी अच्छा है आपका गूढ़ वेश। आपको अब कोई चीन नहीं पाएगा। आप नगर भ्रमण के लिए अब निकल सकते हैं। ये विश्वस्त सैनिक आपके साथ रहेगा। सैनिक,
2: तुम सिर ऊंचा करो। सैनिक, तुम पैठार गांव के अनिरुद्ध हो ना?
0: हाँ महाराज, आपने पहचान लिया, ये वही है।
2: बंधु, हमारी भावच वृंदा कहाँ है? शची कैसी है? ग्रामणी वीरभद्र और अन्य सब कैसे हैं?
3: महाराज, आपको मेरा स्मरण है, मैं धन्य हुआ। हम वनवासियों की स्मृति आपको है, पैठार गांव कृतार्थ है। वृंदा तो हमारी जीवनी शक्ति है, और शची के भाग्य को क्या कहूं। उसे आस है कि उसका अवधूत एक दिन उसके पास वापस लौटेगा।
2: बंधु, लौटता वो है जो कहीं दूर जाता है। शची तो हर गैल घाट ऊंची नीची पगडंडी पर हर कहीं मेरे साथ है। ये उसकी दी हुई लकुट को देखो, पैठार ग्राम में शची ने मुझे सौंपी थी। सदा मेरे साथ का संबल बन गई है ये।
3: ये तो हमारे कुल की लकुट है। वृंदा इसे रात बरात नदी नालों के लिए अपने साथ रखती थी।
2: शची कैसी है निरुद्ध?
3: स्वस्थ ही मानिए महाराज, बाट जो रही अपने अवधूत की। वर्षा बीती, शरद ऋतु गई, बसंत और फिर ग्रीष्म का जाना, पावस कहाना, न जाने कितने दिन बीते। संध्या होते ही उसकी आंखें उज्जैनी से आने वाले मार्ग पर टिक जाती हैं। रात गहराने तक वो वहीं एक टक बैठी रहती है, स्मृतियों की उलझने सुलझाती हुई।
2: ओ शची, अब हमें चलना चाहिए महामात्य। इतने ही दिनों में क्या से क्या हो गया इस कनक प्रगा उज्जैनी को। राज्य की स्थिति देख रहे हो अनिरुद्ध, मेरे पास केवल आज रात का ही समय है। यहां अधिक समय तक मेरा होना अप्रकट नहीं रहेगा। प्रजा निश्चय ही त्रस्त होगी, क्योंकि सर्वत्र लंपट लंपाक और कल्लांच प्रभावशाली हो रहे हैं। जिन पर रक्षा और सुशासन का दायित्व है वो निर्लज्ज होकर धन संग्रह में लिप्त हैं। आह अवंती
3: महाराज।
2: आह बंधु, तंत्र की सभी अच्छाइयां बुराइयां ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। प्रजा को इस अराजकता में धकेलने का अपराधी मैं हूं।
3: अपने आप को दोष न दे महाराज, एक बार उज्जैनी लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा।
2: बंधु, मधुपान की इच्छा है?
3: इस समय देव की सुरक्षा का दायित्व है मुझ पर।
2: दो एक चषक।
3: आपको सुरक्षित आवास तक पहुंचाकर मैं पूरा भांड स्वीकार कर लूंगा, किंतु अभी तो आप क्षमा ही करें।
2: सामने पान ग्रह देख रहे हो अनिरुद्ध, दूर दूर तक विख्यात। वस्तुतः ये श्रेष्ठियों श्रीमंतों अस्पदों का मनोरंजन स्थल है। इसमें प्रवेश अत्यंत व्ययसाध्य है। स्वर्ण से नीचे की मुद्रा तो यहां चलती ही नहीं। आओ, उज्जैनी का सामंती पहलू भी देखें अनिरुद्ध। आओ।
4: महाराज, श्रेष्ठी, कहाँ से पधारे हैं?
1: सौराष्ट्र से।
4: पधारिए, आपका स्वागत है। इस और पधारी श्रेष्ठीवर, यहाँ विराजे।
1: कोई अन्य पीठिका नहीं है, वस्तुतः ये दिशा मेरे लिए अनुकूल नहीं है। उस ओर भी तो पानपीठ रिक्त है।
4: आपके लिए वहाँ बैठना अनुकूल नहीं होगा, वह राजन्य है। कुमार विक्रम राजा के अनुज कब क्या व्यवहार कर बैठे, हमारे लिए तो सभी सम्मान्य है।
1: किसी मान अपमान का दोष मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बड़ी खूं अतः भागी भी रूबी। वहां आसन स्वच्छ करें और दो चषक यवनी मद के उपलब्ध कराएं।
4: सम्मानित कुमार, यह सौराष्ट्र के सार्थवाह है, यदि आपकी अनुमति हो तो यहां बैठ जाएं। जैसी आज्ञा हो।
5: तीन चषक कहके की दाखा और उस हरित परिधान वाली तनमंगी के हाथों शिकता करो। मुझे तो लगता है कि महाराज या तो दस्युओं के हाथ बढ़ गए या शत्रुओं के। मुझे तो अब उनके जीवित होने में भी संदेह है। कहीं बंदी होते तो कोई ना कोई सूचना मिल जाती।
2: इतने दिनों तक राज सिंहासन का खाली रहना भी उचित नहीं है महाराज। राज परिषद में यह प्रश्न भी उठना चाहिए।
4: अनेक सामंतों का भी यही मत है, किंतु महामात्य का तर्क है कि अभी ना तो कोई बाहरी संकट है और ना ही किसी सैन्य अभियान की आशंका, इसलिए
5: वो धूर्त महामात्य इच्छा होती है कि उस बुढ़े का सिर काट कर गढ़कालिका पर चढ़ा दूं।
2: शांत रहें कुमार, शांत रहें, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं।
4: महामात ने राजमहालय में अपने विश्वस्त अनुचर नियुक्त कर रखे हैं, वहां केवल क्रीत दासी वैसिका का आदेश चलता है। वो दासी आस पदों की उपेक्षा करती है, उनका अपमान करती है।
5: कुछ भी कहो विजय सेन, वो दासी मुझे आकर्षित करती है, एक चुनौती सी देती है।
2: कुमार के लिए भला क्या संभव है। आप चाहें तो अभी पकड़ ले जाकर उस दासी को। कौन रोक सकता है भला आपको। महाराज तो है नहीं, अब आप ही तो स्वामी हैं अवंती के। फिर दासियां तो होती ही हैं स्वामी को सुख देने के लिए।
5: सुनो, वैसी का अब दासी नहीं है, रानी पिंगला ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया है और राज पुरोहित ने उसे अपनी पुत्री माना है और राज्य की सम्मानित नागरिक है। इससे क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कैसे नहीं मानते। कुमार विक्रम के प्रस्ताव को अभी चल।
4: कृपया उन्मत्त ना हो कुमार, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मेरे आवाज पर चलकर सोचते हैं कि करना क्या है।
5: अरे करना क्या है, वैसिका के पास चलना है और क्या है। चलो चलो।
4: ओह, स्वामी ने तो मदिरा चखी भी नहीं, दूसरी लाऊं?
1: नहीं, मन कहीं खिन्न सा हुआ है। ये राजद के पुरुष अभद्र ही नहीं लंपट भी है।
4: बड़े लोग हैं, हम तो सेवक हैं, क्या कर सकते हैं। स्वामी यदि द्यूत कक्ष में मनोरंजन करना चाहते हैं तो वहां लिए चलता हूं, और ये मदिरा पात्र भी दूर नहीं है द्यूत कक्ष, मात्र आंगन पार करना है, कदाचित वहां स्वामी की खिन्नता दूर हो सके।
0: जिस प्रकार कुमार विक्रम की बातें सुनने के लिए भर्तहरि इस मध्यपीठ पर आए थे, उसी भांति

दो व्यक्ति उनकी निकट की पीठ पर आकर बैठे थे और कनखियों से भर्तहरि को देख लेते थे। भर्तहरि जान गए थे कि ये कूट पुरुष हैं जो उन पर दृष्टि रख रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी गाय कांतारी का 18वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। वस्त्र मंत्रालय इस महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली में वस्त्रलोक बुनाई के नए तरीके नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेगा। यह प्रदर्शनी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह दर्शन यात्रा हमारी सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000

0: लगातार अधिक है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और प्रदेश में 4 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा, जिसके चलते कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका नाहटा स्वागत करती हूं आप सभी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे क्रम आज की बात में मित्रता दिवस पर चलाने में साइकिल और सुनने में रेडियो का कोई मुकाबला नहीं विषय पर और शिव की नगरी शिवपुरी का वर्षाकालीन पर्यटन पर। मित्रों, प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाया जाता है। मित्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मित्रों के प्रति अपने स्नेह, विश्वास और सम्मान को व्यक्त करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चे मित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मित्र हमारे जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। आज के व्यस्त जीवन में लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मित्रों से मिलने और बातचीत करने का समय कम मिल पाता है। ऐसे में मित्रता दिवस हमें अपने पुराने और नए मित्रों से जुड़ने का अवसर देता है। दोस्तों, मित्रता जीवन का सबसे सुंदर और मजबूत रिश्ता है। एक सच्चा मित्र हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करता है और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तब सच्चा मित्र हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। विद्यार्थियों के जीवन में मित्रों का विशेष महत्व होता है। वे पढ़ाई में एक दूसरे की सहायता करते हैं, खेलकूद में साथ देते हैं और जीवन के अनेक अनुभव साझा करते हैं। अच्छे मित्र हमें अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे मित्रों का चुनाव करना चाहिए। मित्रों, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी आदर्श मानी जाती है। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ निभाया। जब सुदामा निर्धन हो गए तब श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे उनकी सहायता की। उनकी मित्रता सच्चे प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। श्रोताओं, सच्ची मित्रता वही है जो समय, दूरी और परिस्थितियों से कभी कमजोर नहीं पड़ती। मित्रता जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। एक सच्चा मित्र हमारे जीवन को सुखद, सरल और सफल बनाता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे मित्र बनाने और स्वयं भी एक सच्चा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। यही मित्रता दिवस का वास्तविक संदेश है।

श्रोताओं, चलाने में साइकिल और सुनने में रेडियो का कोई मेल नहीं एक रोचक और विचारपूर्ण कथन है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि साइकिल चलाना और रेडियो सुनना दो अलग अलग कार्य हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। साइकिल एक ऐसा साधन है जिसे चलाने के लिए शारीरिक मेहनत, संतुलन और अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि रेडियो मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने का माध्यम है। साइकिल और रेडियो का कोई सीधा मेल नहीं है, फिर भी दोनों का हमारे जीवन में अपना अलग महत्व है। दोस्तों, साइकिल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, जबकि रेडियो हमारे ज्ञान और मनोरंजन में वृद्धि करता है। इस प्रकार दोनों अलग अलग होने के बावजूद जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हैं। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि हर वस्तु और कार्य का अपना अलग उद्देश्य होता है। मित्रों, हमें दो अलग अलग चीजों की तुलना केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वह एक ही समय में उपयोग हो सकती है। हर साधन की अपनी विशेषता और उपयोगिता होती है। साइकिल को उसकी गति, स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरण अनुकूलता के लिए जाना जाता है, जबकि रेडियो को सूचना और मनोरंजन के लिए। आज के डिजिटल युग में युवाओं के पास मोबाइल, इंटरनेट और अनेक आधुनिक साधन है, फिर भी साइकिल और रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। युवाओं को चाहिए कि वे साइकिल चलाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रेडियो जैसे ज्ञानवर्धन माध्यमों से नई जानकारी प्राप्त करें।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और वन्य जीवों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। वर्षा काल में शिवपुरी की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियों से बहते झरने, शांत झीलें, मनमोहक वन क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि बरसात के मौसम में शिवपुरी पर्यटन प्रेमियों की पहली पसंद बन जाता है। वर्षा ऋतु में शिवपुरी का वातावरण अत्यंत सुहावना हो जाता है। हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और बादलों से ढका आसमान प्रकृति को जीवंत बना देता है। श्रोताओं, यहाँ स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्षा ऋतु में भी आकर्षक दिखाई देता है। जंगल की हरियाली, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाज और वन्य जीवों की मौजूदगी पर्यटकों को अनोखा अनुभव प्रदान करती है। शिवपुरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में

0: रखना प्रत्येक पर्यटक की जिम्मेदारी है। दोस्तों, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बारिश के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और रोमांच का आनंद लेना चाहता है तो शिवपुरी उसके लिए एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल है। यहाँ बिताया गया समय जीवन भर की मधुर स्मृतियां बनकर साथ रहता है।
1: सावन का महीना पवन करे सो

0: Fere Sor.
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, सोर सोर सोर।

श्रोताओं, ये कुछ नगमे थे दोस्ती पर समर्पित। ये जो गीत आप अभी सुन रहे थे वो था फिल्म दिल चाहता है से। स्वर थे शंकर महादेवन के, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दीजिए अब कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म धरती से। स्वर थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये गीत लिखा था हजरत जयपुरी ने और इसे संगीत में बनाया था शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते कार्यक्रम का अगला।

मौसम को लुभाता ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जब वी मेट से, और इस गीत को गाया है उस्ताद राशिद खान ने। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में 28,000 जगहों पर से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति परिवार समुदाय और वर्ग का सहयोग अपेक्षित है।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जयंती पर विधानसभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, सिंचाई, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। यहां 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। और प्रदेश में 4 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा, जिसके चलते कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। स्वर है लता मंगेशकर के, ये शब्द रचना है वर्मा मलिक की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म महबूबा से। स्वर हैं लता मंगेशकर के, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज में फिल्म मंजिल का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है आरडी वर्मन ने।

0: लुटेरे।
1: आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। शब्द रचना है धर्मेश दर्शन की और संगीत है आनंद मिलन का।

कार्यक्रम में अगला और बहुत ही प्यारा संगीत जिसे हमने लिया है फिल्म दहक से, स्वर हैं हरिहरन और साधना सरगम की। श्याम राज के लिखे गीत को संगीत में बनाया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अब आप सुनेंगे आनंद बख्शी के लिखे गीत को एस डी बर्मन की संगीत निर्देशन में, स्वर है लता मंगेशकर के और फिल्म है चुपके चुपके।

सावन को आने दो। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में। ये शब्द रचना है गौहर कानपुरी की और संगीत निर्देशन है राजकमल का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जुर्माना से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना नंद बख्शी की और संगीत है आर डी बर्मन का।

लम्हे, आइए अब सुनते इस फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और इला अरुण और साथ में इनके साथियों के। ये गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है शिवहरी का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है अंदाज, स्वर हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के। ये गीत रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%

0: प्रतिशत, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनिएगा 7:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। आज का विषय होगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कंवर सिंह जी। ये प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की रहेगी। रात 8 कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी बैतूल की। रात्रि 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें आप सुनेंगे सुधाकर देवले का ख्याल गायन।

कल प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर आप सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 कार्यक्रम सुरमई सबीरा। ये कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित रहेगा। 9:15 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे बिहारी लाल राव व साथी। आप सुनेगा इनके मालवी लोकगीत। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा और 10:00 जिले की चिट्ठी। गीत सागर कार्यक्रम का समय होगा 10:05। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनिएगा भुवनेश कुमकली का ख्याल गायन, राग होगा सावनी। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम, इसके बाद 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी कायकांतारे का 19वां भाग। दोपहर 1:00 कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी भोपाल की। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45

40 मिनट पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी पेश किया जाएगा। योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का।

फिल्म संगीत आप सुनिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात्रि 8:30। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल और 6:45 पर आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। कल शाम 7:21 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। रात 8:00 संसद समीक्षा और 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: कल रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता देते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनिएगा 7:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। आज का विषय होगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कंवर सिंह जी। इसके बाद रात 8 कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्रामीण अभियान। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी बैतूल की। श्रोताओं, ये थे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
8: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
9: RBI कहता है
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अगले 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्त मध्य प्रदेश की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में जन भागीदारी का किया आह्वान। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी और प्रदेश में अगले 2 तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना। 4 और 5 अगस्त से मानसून फिर होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प

0: अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अगले 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने की अपील की।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मिनट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इस अभियान में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक व सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आज नियंत्रण करते हैं, निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और कहा कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुँचाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन वे कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर, बरहामपुर और तप्तपानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के बेरसिया में लगभग 50 करोड़ की लागत से बने शासकीय सांदीपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस दौरान संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी भ्रमण करेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के

शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती होगी। इसके बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर आचार्य श्री समय सागर महाराज ने कहा कि अहिंसा, दया और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। इंदौर में राजस्थान के जैसलमेर सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा आरिफ को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सेफी नगर स्थित घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इमली बाजार कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मेजर हमजा आरिफ की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जैसलमेर में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। इनमें बॉक्सिंग के 10 पदक शामिल हैं, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल और प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीते। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद भारत के कुल 39 पदक हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैतूल जिला मुख्यालय पर कल 3 अगस्त को कृषि उपज मंडी बडोरा में महोत्सव आयोजित होगा। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में गो शेडो एवं भूसा भंडार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान को तेज कर दिया है। पिछले 10 दिनों में 57 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है। बहने सुने अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन।

0: कार्यक्रम सुनबे बारी हमै सबै बिन्नाहरणको भौजीहरणको कल्पना बहनकी राम राम और करत स्वागत आज के घर आंगन कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बहनों जे बताओ कि आप और उनके कैसे का हाल चाल है। हम समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हमारी बहनन के जे उमस भरी गर्मी में बहुत ही बुरे हाल बेहाल हैं। ना तो देखो भीतर चैन मिल रहा हो ना बाहर चैन मिल रहा हो। बस मन जे कर रहा है कि बाहर जाके बिजना लेके पेड़ के नीचे बैठ जाए, लेकिन जे कार्य कार्य बदरा छा जाते हैं फिर वो देखो पानी नहीं बरस रहो। अब देखो आषाढ़ भी सूखे निकल गए, अब देखो सावन भी लग गया है। बस अब इंतजार है कि कब छमाछम वर्षा होगी, तब तन और मन को चैन मिले है। बिनारो जब रिमझिम वर्षा होगी तभी जे धरती की तपन दूर होगी, लेकिन बहनों जे उमस भरी गर्मी में अपा और अपाई मोड़ो मड़िन को विशेष ख्याल सोई रखने हैं। काहे से के बहनों देखो अब जे दिनन में कई तरह के कीड़े मकूड़े मच्छर पनप जाते हैं और बिन से देखो कई तरह की रोग बीमारी बुखार खांसी जुकाम मलेरिया जे हो जाते हैं है। अब वे घर के भीतर घुस जाता तो वे काट भी लेते हैं, जैसे कई तरह के फोड़े फुंसी भी है जाते हैं और वे फोड़े फुंसी जब अपन खुजलाते हैं तो वो बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे में बहनों देखो स्वच्छता को भी विशेष ख्याल रखना है। काहे से के बहनों देखो जे चौमासिन में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने ही पड़ता है। अपन घर आंगन की साफ सफाई रसोई घर की साफ सफाई तो रोज ही करना है और जो भी दाल चावल मिर्च मसाले जो डब्बा में भरे हैं बिने भी देखो समय समय पे देखने हैं। जब धूप अच्छी निकल आवे तो बिने सुखाने हैं, नहीं तो देखो फफूंद लग जाते और छोटे छोटे कीड़े होने लगाते। तो ऐसे ही बहनों देखो जो ओढ़ बे के पहन बे के कपड़ा लत्ता है चादर है जो भी है धूप निकलने पर बिने भी सुखा लें, जैसे बिन की सीड़न है चली जाते। ऐसे ही बिना देखो सबसे पहले देखो जो अपन जो शौचालय हैं बिन की भी अपन को रोज़ सफाई करते रहने हैं। आप सभी देखो घर परिवार में तभी स्वस्थ रहें। तो कहते ना बहनों कि स्वास्थ्य को सीधा संबंध स्वच्छता से ही होता है। बहनों देखो चर्चा तो अपन आगे और भी करे हैं, पहले लेते हैं तनक विराम।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों के बाद स्वागत है फिर से घर आंगन कार्यक्रम में। बहनों देखो, वैसे भी अब विश्व स्तनपान दिवस चल रहा है और संघ में अपन चर्चा करेंगे कि माँ का दूध बच्चे का सर्वोत्तम आहार। तो बहनों कहते ना कि माँ को पहलो पीलो गाढ़ो दूध शिशु के लिए अमृत समान होते है, यानी कि बहुत ही अनमोल होते है। तो बहनों प्रसव के एक घंटे के भीतर ही स्तनपान

0: शुरू करने हैं और 6 माह तक केवल माँ को ही दूध देने हैं। फिर 6 माह के बाद ऊपरी आहार के रूप में कई तरह की चीज़ें दे सकते हैं और 2 वर्ष या उससे अधिक स्तनपान जारी रखने हैं। इससे शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और दस्त, निमोनिया और संक्रमण से भी बचाते हैं और मन, मस्तिष्क, बुद्धि और समझ भी बढ़ाते हैं। और शिशु को टीकाकरण करवाने हैं, वजन करवाने हैं, इसके लिए देखो आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क करने हैं और जो कार्ड वहाँ बनते हैं भाई संभाल के रखने हैं और जो टीका लग जाए वहाँ पर टिक का निशान लगाते रहें। और टीकाकरण बहनों कहीं भी कौन सी जगह पे लग सकते हैं। और बहनों देखो गर्भावस्था में एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और एक नई जिंदगी की तैयारी है, लेकिन बहनों नई खूबसूरत सफ़र में एक अदृश्य खतरा भी संगे संगे चल रहा होता है और वो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। बहनों गर्भावस्था में महिलाओं में अक्सर एनीमिया है जाते हैं, इसे माँ में कमजोरी आउत है और गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है और इसे शिशु दिव्यांग और मंदबुद्धि भी हो सकता है और माँ की डिलीवरी होने में भी परेशानी आउत है। कई बार देखो माँ और बच्चे के लिए ये जानलेवा भी है जाता है। इको समाधान है बहनों और वो है बहनों आपके हाथ में। बहनों गर्भ को पता चलत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपन नाम लिखवाना है, इसे प्रसव पूर्व आवश्यक जाँचें संभव हो सकते हैं और जाके संगे संगे खून को पता भी चल सकते हैं। बहनों गर्भ को पता चलते ही शुरू के 3 महीने तक फॉलिक एसिड की गोलियां लेने हैं और बाद में 4वें माह से 9वें माह तक आयरन की गोलियां को सेवन करने हैं और जे गोलियां बहनों प्रसव के 6 माह तक भी ले सकते हैं। और बहनों जे गोलियां खाली पेट तो बिल्कुल ना खाएं, पहले कचू खट्टो खा लें तो खट्टो खा लें तो ठीक रहता है। तो इन गोलियों के सेवन से देखो जो मल होते हैं वो काला हो जाता है, लेकिन घबराए नहीं, ये सामान होते हैं। बहनों याद रहे कि आयरन और कैल्शियम की गोलियों को एक संग बिल्कुल ना खाएं, इनमें 3 या 4 घंटे को अंतर रखने हैं। और हाँ बहनों पेट के कीड़े भी देखो कबं कबं हो जाते हैं तो जाके ले कृमिनाशक गोलियां खाएं। बहनों ये गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए चिकित्सक की सलाह बहुत ही ज़रूरी होता है। बहनों गर्भावस्था के दौरान भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व हो वो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हरी साग भाजी, सलाद, दूध, मेवा, अंकुरित अनाज जे रोज ही अपने भोजन में शामिल करने हैं। बहनों देखो जय संबंध में देखो आज हम एक भेंट वार्ता भी लेके आए हैं जाको विषय है माँ का दूध अमृत समान, जाकी जानकारी दे हैं डॉक्टर किरण चौधरी और उनसे बातचीत करेंगी आभा गुप्ता। तो चले सुनते हैं अपन जो भेंट वार्ता।
1: बहनों नमस्कार, आज की हमारी भेंट वार्ता का विषय है माँ का दूध अमृत समान और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारी हैं डॉक्टर किरण चौधरी। डॉक्टर बहन राम राम।
2: राम राम आभा जी।
1: और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बच्चे के लिए माँ के दूध को अमृत कहा जाता है जी। तो बच्चे के लिए यानी कि शिशु के लिए माँ का दूध क्यों ज़रूरी है और ये क्यों पिलाना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में हमारी बहनों को बताइए।
2: आभा जी, माँ का दूध अमृत माना जाता है
1: जी,
2: उसकी बहुत सारे कारण हैं। अमृत उस पेय को कहते हैं जो जीवनदायक होता है।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरीके से माँ के दूध में इतनी विशेषताएं होती हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो बच्चे को बीमारियों से भी बचाता है, उसके विकास में सहायक होता है और बीमारियों से बचा करके उसके जीवन की रक्षा

0: करता है, क्योंकि यह जीवन की रक्षा करता है, इस वजह से इसको अमृत के समान माना गया है।
1: बिल्कुल, यानी कि पर्याप्त पोषण जो बच्चे को शिशु को चाहिए वो माँ के दूध में होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, कई बार डॉक्टर बहन ये देखने में आता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो माँ का जो पहला दूध होता है वो पीला और गाढ़ा सा होता है, उसे ये कहती हैं बुजुर्ग महिलाएं या और लोग कि भाई ये दूध बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसे नहीं देना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए।
0: ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। शुरू में प्रसव के तुरंत बाद का आने वाला जो गाढ़ा दूध, जिसे खीस भी कहा जाता है, इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा इसकी खासियत होती है कि ये बीमारी से लड़ने के लिए जितने भी तत्व होते हैं वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बच्चे का पहला टीका भी माना जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर इसको नहीं दिया जाए तो बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती है, इसलिए इसको देना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें और भी विशेषताएं होती हैं। ये पचने में बहुत आसान होता है,
1: माँ का दूध।
0: जी
1: जी,
0: ये जो खीस होती है पचने
1: अच्छा।
0: में बेहद आसान होती है, आंतों की सफाई में सहायक होती
1: अच्छा।
0: है। आंतों की सफाई की वजह से बच्चे में पीलिया की आशंका कम होती है, और अगर पीलिया होता है तो ये उसको जल्दी ठीक करने में सहायक होता है।
1: जी,
0: आंतों के विकास में ये सहायक होता है, जिससे कि बच्चे को दूध अच्छी तरीके से हजम होता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए इस खीस को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए निकाल करके। ये सारी माएँ हमेशा ध्यान रखें कि इसको जरूरी लेना है।
1: अच्छा, तो ये केवल एक भ्रांति है कि इसे फेंकना चाहिए, बल्कि उसके उलट ये तो और ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, है ना। दूध अच्छा। की जो संरचना होती है वो विभिन्न चरणों में अलग तरीके से होती है, और ये प्रसव के तुरंत बाद की जो संरचना है ये बिल्कुल भिन्न होती है।
1: और जैसा कि आपने बताया कि शिशु के लिए जो माँ का दूध होता है वो अमृत के समान होता है और बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
0: आभा जी, दूध के बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगी। दूध में बहुत तरीके की विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषताएं इसमें ये रहती हैं कि ये पोषक तत्व शिशु के लिए जितने भी ज़रूरी होते हैं, खासकर पहले 6 महीने के दौरान,
1: बिल्कुल
0: वो इसमें सब होते हैं। इसलिए बच्चे को ऊपरी दूध या पानी
1: या
0: किसी भी तरीके के आहार की जरूरत नहीं होती,
1: यानी
0: है।
1: कि पहले 6 महीने तक बच्चे को
0: पर्याप्त
1: तरह से माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ना ऊपरी कोई आहार देना चाहिए, ना तरल पदार्थ देना चाहिए, ना पानी देना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी
0: हो। ये सब अगर ऊपरी पदार्थ बच्चे को दिए जाते हैं तो उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो माँ में दूध कम होने लगेगा, और दूसरा बच्चे में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, जिससे बच्चा बीमार जल्दी पड़ता है।
1: और जो लोग बच्चे को ऊपर बोतल से दूध पिलाते हैं निपल लगा करके, तो उसमें भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
0: बोतल से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं। बोतल लगाने के बाद संक्रमण तो होता ही है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी साफ सफाई उसकी करें, लेकिन उसमें कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। दूसरा, उसमें निपल का भ्रम हो जाता है बच्चे को, और बच्चा माँ का आंचल छोड़ देता है।
1: अच्छा।
0: और इस वजह से धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा माँ का आंचल नहीं लेता है, तो माँ का दूध भी सूख जाता है, और माँ के दूध के जितने फायदे हैं जो अमृत के माना जाता है वो बच्चे को नहीं मिलते हैं।
1: और बच्चे का पहला अधिकार है माँ का दूध, तो उससे वंचित नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर कई बार जो माँ बनती हैं महिलाएं वो बच्चों को इसलिए स्तनपान नहीं कराती हैं, उनका कहना है कि हम तो कमज़ोर हैं और यदि बच्चे को दूध पिलाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर हम काम कैसे करेंगे, घर गृहस्थी कैसे संभालेंगे।
0: आभा जी, ये भी एक भ्रांति है कि बच्चे को दूध पिलाने से कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी असल में आती है ढंग से ना खाने पीने से। माँ का दूध बच्चा जो है बिल्कुल कमजोरी नहीं लाता है, बल्कि माँ के लिए उतना ही सहायक होता है जितना बच्चे के लिए।
1: बिल्कुल,
0: उतने ही फायदे माँ को होते हैं जितने बच्चे को होते हैं। बच्चे को अगर माँ दूध पिलाती है तो कमजोरी तो नहीं आती है, लेकिन प्रसव के बाद होने वाले खून का स्राव, उसकी पीड़ा,
1: अच्छा,
0: उसमें आगे चल करके कैंसर होने का खतरा, ये सारी चीज़ें माँ में कम हो जाती
1: हैं
0: अगर बच्चे को वो बराबर दूध पिलाती है।
1: यानी कि बच्चे को दूध पिलाना माँ के लिए भी हितकारी है।
0: बिल्कुल, उतना ही हितकारी है जितना बच्चे के लिए है।
1: अच्छा, कई बार देखने में ये आता है कि यदि माँ को जुकाम खांसी हो गया है या बुखार है हल्का फुल्का, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं कि बच्चे को भी हो जाएगा।
0: जी जी,
1: तो इस बारे में थोड़ा बताइए।
0: इस संबंध में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि खांसी, जुकाम, बुखार
1: जी,
0: इन किसी भी बीमारियों में बच्चे को दूध पिलाने से वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ को जो बीमारियाँ हो रही हैं उसके शरीर में उसके लिए जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है
1: जी,
0: वो माँ के दूध में आती है और माँ के दूध के द्वारा बच्चे को मिलती है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चे को माँ सुरक्षित करती है दूध पिला करके,
1: बिल्कुल,
0: बजाय इसके कि बच्चे को से किसी भी तरीके का नुकसान होगा।
1: यानी माँ से दूध बच्चे को मिलता है, बच्चे के अंदर उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता
0: पैदा होती है। तो इसलिए किसी भी रोग के दौरान बच्चे को वंचित नहीं करना चाहिए माँ के दूध से। माँ का दूध हमेशा हर हालत में पिलाना चाहिए। सिर्फ बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मना किया जाता है, और उन बीमारियों को डॉक्टर ही महिला को बता देगा कि इन बीमारियों में बच्चे को दूध नहीं पिलाना है।
1: बिल्कुल। और साधारण खांसी, जुकाम या बुखार हो,
0: दस्त लग रहे हो, मलेरिया हो, जॉन्डिस हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, लेकिन बच्चे को दूध माँ का ही देना चाहिए।
1: जी, अच्छा, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस माँ को जो बच्चे को दूध पिलाती है?
0: देखिए, बच्चे को सबसे पहले तो प्रसव के बाद जितनी जल्दी हो सके आंचल से लगा देना चाहिए।
1: जी।
0: पहली खुराक जो उसके मुंह में जानी चाहिए वो माँ का दूध हो। शुरू के पहले घंटे में बच्चा सजग और सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है।
1: अच्छा।
0: इस एक घंटे में उसकी इच्छा दूध खींचने की सबसे तीव्र होती है। इस वजह से इस एक घंटे में अगर माँ ने उसको लगाया है तो आगे चल करके दूध ना निकलने का खतरा बहुत कम होता है।
1: अच्छा।
0: बच्चे को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा विकास होता है। उसकी अपनी संतुष्टि, उसकी अपने शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: बच्चे को इसलिए जितनी जल्दी हो आंचल से लगाएं। उसको कोई चूसनी, शहद, घुट्टी, पानी, ऐसे जो रस्में आती जाती हैं गांव में खासकर, वो बिल्कुल नहीं निभानी चाहिए,
1: क्योंकि बच्चे के लिए घातक
0: हैं। वो बच्चे के लिए घातक हैं, उसमें बच्चे के लिए संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है।
1: और इतने छोटे बच्चे को यदि उल्टी दस्त हो तो समस्या हो जाएगी।
0: और माँ का दूध खासकर दस्त और निमोनिया से बचाने में बेहद सहायक।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए माँ के दूध में जितनी भी तारीफ उसकी की जाए उतनी कम है।
1: 6 महीने तक तो आवश्यक है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद भी यदि बच्चा पीता है तो पिला सकते हैं।
0: बच्चे को माँ का दूध उसका हक है कि उसे मिलना चाहिए, और ये 2 साल तक जरूर मिलना चाहिए।
1: अच्छा।
0: लेकिन 6 महीने के बाद सिर्फ माँ के दूध पर उसका पूरा विकास नहीं होता है, इसलिए ऊपरी आहार, जो पूरक आहार कहा जाता है, उसको साथ में देना जरूरी होता है। 2 साल के बाद अगर बच्चा मांगता है तो पिलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पर्याप्त ऊपरी आहार के साथ।
1: अच्छा डॉक्टर बहन, एक भ्रांति और है महिलाओं में। आजकल की जो लड़कियां हैं वो इस बात को मानती हैं कि यदि बच्चे को हम दूध पिलाएंगे तो हमारा शरीर फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा।
0: ये भ्रांति भी है, और इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही है तब तक माँ का शरीर बेडोल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूध को उतारने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा चाहिए, वो माँ से ही मिलती है। और माँ में जितनी भी प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी वसा जमा हुआ है, जितना वजन उसका बढ़ा है, वो जल्दी ही ख़त्म होता है।
1: अच्छा।
0: तो बल्कि इसके भ्रांति के उलट है कि माँ का शरीर फैलता नहीं है, बल्कि माँ का शरीर अपने
1: ढलता है
0: उस आकार में आ जाता है। बेडोल तब होता है जब माँ खाने पीने में वसा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करे। ज़्यादातर घरों में ये देखा जाता है कि प्रसव के दौरान की कमजोरी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा घी, तेल, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं,
1: और
0: उसके शरीर के आकार को बेडोल बनाती हैं।
1: यानी कि पौष्टिक आहार तो माँ को लेना चाहिए, लेकिन वसा और फैट जो हो बहुत ज़्यादा नहीं। तो बच्चे को जो दूध पिलाती है माँ उससे उसका शरीर बल्कि और आकार में आता है, ना कि बेडोल होता है। और एक बात और मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगी, ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं पर्याप्त रूप से, वो बच्चे मेधावी होते हैं।
0: बिल्कुल, बच्चे मेधावी भी होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ज्यादा होते हैं। एक जो कहावत कही जाती है कि माँ का दूध अगर पिया है तो सामने आओ, वो बिल्कुल सच है क्योंकि माँ के दूध में जितने तत्व होते हैं वो ऊपर के किसी दूध में नहीं होते, चाहे वो डिब्बे का हो, चाहे वो गाय का, भैंस का, बकरी, किसी का भी दूध हो।
1: यानी कि माँ के दूध की ताकत को ये मुहावरा बताता है।
0: ये मुहावरा

0: मुहावरा बताता है और इसी मुहावरे से सब लोग समझ सकते हैं कि माँ का दूध कितना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, और ये तो बलशाली होने की बात हुई, और जहाँ तक मेधावी होने की बात है,
0: बिल्कुल मेधावी भी है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो आगे चल कर के बहुत अच्छा करते हैं, आगे उन्नति उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेधावी वो ज़्यादा होते हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर किरण चौधरी, आपने जानकारी दी माँ का दूध अमृत समान, और उम्मीद है कि हमारी बहनों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आभा जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बहनों देखो, अभी आप सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो माँ का दूध अमृत समान, जाके जानकारी दे रही थी डॉक्टर किरण चौधरी, और उनसे बातचीत कर रही थी बहन आवा गुप्ता। तो बहनों देखो, हम पूरी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी डॉक्टर बहन ने, किरण बहन ने पूरी विस्तार के संग अपनी बहनन को बातें बताई समझाई, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी बहनन ने बड़े ध्यान से सुनी होगी और उनके बताए रास्ते पे अवश्य चलेंगी। अब बहनों देखो, चर्चा तो अपन आगे और भी करें हैं, पहले लेते हैं तनक विराम और फिर सुनवाते हैं आपको एक 900 लोकगीत उम्रा पांडे और देशराज पटेरिया से।

हम छोड़ देते नहीं, लेकिन अरे लड़का तुम्हें राम ने दो है, बिटिया भाई होती तुम, हाँ लड़का तुम्हें राम ने दो है, और बारह मणियां पूजे भव है, हम सब खाए आनंद भव है, हाँ लड़का तुम्हें राम ने दो है, बारह पथरा पूजे भव है, हम सब

बहनों, अबे आप सुन रही थी जी देखो 900 लोकगीत उर्मिला पांडे और देशराज पटेरिया से। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप और उनको खूब पसंद आ हुई है। अब बहनों देखो, अपन चर्चा करेंगे मंगल दिवस की अवधारणा का है। बहनों जे जो हम जीवन में सकारात्मक सोच, अच्छे काम और खुशहाली को संदेश देते हैं। बहनों हमारे समाज में मंगलवार को सेवा, अनुशासन और परोपकार को दिन भी मानो जाते हैं, और ई दिना हम अपने परिवार, पड़ोस और गांव के लिए कछु अच्छो करवे को संकल्प भी लेते हैं। और बिन्नारो देखो, हमारी बहनन की भूमिका परिवार और समाज दोनों के लिए विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण

होता है। यदि हमारी बहनें स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों तो पूरा परिवार आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम तो बहनों देखो रेडियो के माध्यम से जो ये कहत रहते हैं कि हमारी बहनें हर बहनों को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने चाहिए और घर के संग संग अपनी आय बढ़ावे के लिए स्वयं को सहायता समूह से भी जोड़ने चाहिए। बहनों मंगल दिवस हमें यह भी प्रेरणा देते है कि हम अपने आसपास स्वच्छता रखें, पेड़ पौधे लगाएं और पानी की बचत करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने हैं। फिर देखो छोटे छोटे अच्छे काम समाज में बड़ो बदलाव ला सकते हैं। बहनों अंधविश्वास से दूर रह के सही जानकारी को अपनाएं और सरकारी जितनी भी योजना हैं उनको लाभ उठाएं और अपनी जो बेटियों को खूब पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित बनाएं और परिवार में प्रेम, सम्मान, सहयोग को वातावरण बनाए रखने हैं। तो बहनों हम तो ये बात तो कहें और अपने दिमाग में भी गठिया लेने हैं कि अपने परिवार, गांव और समाज के विकास के लिए हमेशा नीके नीके कार्य करने हैं और दूसरों को जीवन में भी खुशियां लावे को प्रयास करने हैं। यही मंगल दिवस की सच्ची अवधारणा होते हैं। बहनों देखो अब चलत चलत सुनवाओ देते हैं एक और सावन गीत अलका गुप्ता से।

बहनों देखो, अब आपने कितनों नौनों से सावन गीत सुनो, हम उम्मीद करते हैं आप और उनको पसंद आओ ही है। अब बहनों देखो, अब घड़ी की सुई सारा कर रही है और चलबे की बेरा हो गई है। अपनी कल्पना बहन को दो इजाजत, हम अपनी बहन से फिर मिले हैं, तब तक के लाने हमें राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज की एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
2: जी तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके

0: कल को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से ये एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सकें। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: तिवारी जी कैसे देखते हैं इसे आप?
2: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वो एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सकें, इसे जीवंत कर सकें, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सकें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
0: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है, जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयं सेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जारी किया, जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया। और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है। और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों तक प्राप्त करने और पहुंचने का प्रयास करेंगे।
0: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स

0: उसके खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
2: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है, और उसमें जो लक्ष्य हैं, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल के रूप में काम कर रही है, और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है। और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है, और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
2: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है, और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं, कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो, और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव, बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव, और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है, और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: तिवारी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं, और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
2: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना, तीसरा गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना, पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो

0: स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं, उनको जोड़ना इस अभियान से, इसके अलावा परिवारों को जोड़ना एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्यों में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है, जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। तो यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCB की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति है आकाशवाणी बैतूल की।

श्रोताओ, हमारा देश विविधतापूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और सुंदर वन्य जीव, इन्हीं के बीच बसे हैं हमारे वन ग्राम और वनवासी भाई बहन। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है। यहाँ 46 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहारिया और भारिया प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में देश की जनजातीय जनसंख्या का लगभग 14.7% निवास करता है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उराव जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भील घरों की दीवारों पर पिथौरा चित्रकला एक पवित्र परंपरा है। जनजातियां प्रकृति पूजक होती हैं और वृक्षों के समूह में सरना देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो फसलों की रक्षा का प्रतीक है। हर त्योहार, विवाह और खुशी के मौके पर सामूहिक नृत्य करने का प्रचलन है। जनजातीय महिलाओं के लिए गोदना सौंदर्य और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। फसलों की कटाई के समय नई फसल को देवी देवताओं को समर्पित करने की परंपरा भी है। विभिन्न रंग बिरंगी पोशाकें और आभूषण

0: मंत्री जी की मंशा है कि सभी वर्गों का विकास हो, उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लागू की गई है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है।
1: सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सौभाग्य है देश का कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आपका प्रश्न प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: तो मैं आपको बताऊं कि यह अभियान, जिसे अब धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में विस्तारित किया गया है, देश के दूरस्थ जनजाति गांवों में समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने का यह राष्ट्रीय मिशन है
0: जी।
1: यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा से शुरू किया गया है, जिन्हें धरती आबा के रूप में समूचे भारतवर्ष में जनजाति समाज के भाई बहन उनको सम्मान देते हैं
0: जी।
1: धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना चालू की, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, इसके माध्यम से हमारे जनजाति समाज के 63,843 गांव कवर होंगे
0: जी।
1: 5 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के हमारे भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जनजाति समाज के जीवन स्तर को सुधारने का एक पावन पवित्र अभियान है, आत्मनिर्भरता का आंदोलन है, सम्मान और प्रगति का ये एक अवसर है, और इसके माध्यम से समूचे भारतवर्ष में लगभग 12.5 करोड़ भाई बहन हमारे रहते हैं, जिसमें उनके समग्र विकास की ये आधारशिला के रूप में ये योजना है।
0: उइके जी, इस अभियान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से?
1: इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य है, जैसे 100% जो बुनियादी सुविधाएं जनजाति समाज के भाई बहनों को मिलनी चाहिए
0: जी।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क है, बिजली है, पानी है, उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका कैसे विस्तार हो, और उनके कौशल विकास के साथ में उनको रोजगार की उपलब्धता, उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के युवाओं का कौशल विकास
0: जी,
1: डिजिटल कनेक्टिविटी, पोषण और सामाजिक सुरक्षा, सरल शब्दों में यदि कहें तो हर जनजाति गांव विकास का केंद्र बने, यही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है।
0: तो जैसा भी आपने बताया कि ये हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में इस अभियान का क्या योगदान है?
1: यह अभियान मूलतः जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके गरीबी में कैसे कमी हम लाएं, उनका कैसे समग्र विकास हो, स्थानीय स्तर पे कैसे रोजगार बढ़ाएं
0: जी,
1: और रोजगार के निमित्त तो वो निकटवर्ती जिलों और प्रदेशों में पलायन करते थे
0: जी,
1: तो उनका पलायन कैसे रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने में यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुमानित प्रभाव लगभग लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ, इसमें 63,845 गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और जनजाति युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं
0: जी। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी जनजातियां निवास करती हैं, और हमारे बैतूल की बात करें तो यहां भी जनजाति बहुल ये जिला है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर यह योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी?
1: पूरे देश में मध्य प्रदेश जो जनजाति जनसंख्या के मामले में अग्रणी राज्य है, यह अभियान मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लगभग 267 विकास खंडों के 11,377 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है।
0: और बैतूल जिले की यदि हम बात करें तो इस अभियान की कितनी प्रगति हुई है?
1: मेरा अपना संसदीय क्षेत्र बैतूल हरता हरसूद है, और बैतूल जिले में इस अभियान के तहत लगभग चिन्हित 554 ग्रामों में 12,104 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना की लगभग 82 समूह जल प्रदाय योजना ये स्वीकृत है। 3,90,321 करीब ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, और 99 ग्रामों के विद्युत विहीन 617 घरों में विद्युत उपलब्ध कराई गई है। लगभग इसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से 10 नवीन छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं, और बैतूल में इस योजना के अंतर्गत लगातार प्रगति

0: दर्ज की जा रही है।
1: उइके जी, बैतूल जिले में कितने लाभार्थी हैं जिनको पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का लाभ दिया जा रहा है?
0: इस अभियान से बैतूल जिले में लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीण भाई बहनों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।
1: अभियान के तहत जनजाति गाँव में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और ग्रामवासियों को कैसे प्रेरित किया जाएगा इसकी ओर आने के लिए?
0: इस अभियान के अंतर्गत मूलतः पक्की सड़कें कैसी बने, बिजली, सोलर व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां एवं स्कूल उन्नयन, आजीविका मिशन के तहत रोजगार, साथ ही ग्रामों को प्रशिक्षण, जागरूकता और सहभागिता के माध्यम से युद्ध स्तर पर प्रेरित किया जा रहा है।
1: और एक बात जो देखी जाती है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बुनियादी आवश्यकता है, तो क्या इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों को स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको भी बेहतर बनाया जाए?
0: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुख्य केंद्र बिंदु है और इस अभियान के तहत भवन विहीन एवं जर्जर शालाओं के प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। 10 नवीन 100 सीटर छात्रावासों की स्वीकृति लगभग प्राप्त हो चुकी है। 38 छात्रावासों में आवश्यकता अनुरूप मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही 23 छात्रावासों के अधीक्षक भवन निर्मित किए जा चुके हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकासखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, भवनों का निर्माण और जो ऑफिशियल जो स्टाफ है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उसकी भी उपलब्धता की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
1: ओके जी, एक और मुश्किल देखी जाती है कि जो हमारे जनजातीय भाई बहन रहते हैं वो कुछ पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, क्या पहुंच मार्ग बनवाए जाएंगे, किस तरह उनको विकास की ओर मोड़ा जाएगा?
0: आजादी के बाद तो लगभग 62 वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र लगभग सड़क कनेक्टिविटी से विहीन रहे, लेकिन हमारे आदर्श स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में आपने प्रधानमंत्री सड़क शहर ग्राम योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक गांव मुख्य सड़क से जुड़ चुके हैं और 7 संपर्क विहीन ग्रामों को 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भी अपने यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं
1: जी।
0: और आने वाले कल में आप देखेंगे कि कोई भी मजरा, टोला, गांव सड़कों से भी नहीं होगे, इसको प्राथमिकता के साथ में इसको पूरा किया जा रहा है।
1: उइके जी, एक और बात आती है कि जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है वो इंटरनेट का युग है और बिना इंटरनेट के बहुत से काम करना ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं है और इसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र सुविधा से वंचित रहते हैं, तो इस अभियान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी और अन्य साधनों पर भी क्या ध्यान दिया जाएगा?
0: हमारा सौभाग्य है कि देश का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं
1: जी।
0: उन्होंने एक सपना डिजिटल इंडिया का हम सबको दिया है
1: जी,
0: और उस सपने को पूरा करने के लिए और इंटरनेट की सुविधा के लिए खासतौर से बैतूल जिले के 10 विकास खंडों में 554 ग्रामों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु नवीन टावरों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है और जहां जहां भी इस तरह की विसंगतियां हैं उसको भी बहुत शीघ्र दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।
1: उइके जी, एक अंतिम प्रश्न की ये जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है इसका लाभ लेने के लिए हमारे जनजातीय भाई बहन कितने उत्सुक होते?
0: आपको विदित हो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी बहन, हमारे परिवार की माता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है और खासतौर से जब यह अभियान के निमित्त आपका प्रश्न है तो यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं है
1: जी,
0: बल्कि यह जनजातीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये अनुपम, अद्वितीय और असाधारण प्रयास है। जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है और हम सब उसमें सम्मिलित है कि देश के 140 करोड़ भाई बहन मिलकर हम 2047 तक हमारे राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जब ये अंतिम सिरे पर जो भाई बहन है, समाज है, ये जब सर्वांगीण विकास इनका होगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन पाएगा।
1: ओके जी, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हम सबका यह सपना जल्दी ही पूरा हो। आज जो अपनी व्यस्तताओं के बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्रोताओ, डगर विकास की इस कार्यक्रम में आज हमने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की चर्चा की। आशा है इस योजना से हमारे ग्रामीण भाई बहन लाभान्वित होंगे। आज के अंक में इतना ही। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति थी आकाशवाणी बैतूल की। प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चौरे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने बहुत प्यारा सा लिया है, फिल्म मैंने प्यार किया से। स्वर है शारदा सिन्हा के, गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

एक और बहुत खूबसूरत सनमा जिसे हमने लिया है फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक के। ये शब्द रचना है समीर की और संगीत है अनु मलिक का।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचे।

0: करेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में AI दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब 6ठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू।

0: शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे

0: स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरला में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। और 2026 के दौलत मुश्तरका मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का वर्चुअल वसीले से आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम का आगाज हो रहा है।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत की वजह से लोग अपने मकासद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प

0: हुए डॉक्टर सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से ताउन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनकला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवों का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेज़बान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेज़बानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ग्लासगो में मुनक़द होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज़्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और भरवां नशर किया जाएगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इन खेल मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जूडो में भी तारीखी कामयाबी रही और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संग मिल की हैसियत रखने वाली हसूलियाबियाँ हुईं। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमुई तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से असबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नज़र फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवां माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक़द होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेज़बान के तौर पर भारत को बाकायदा मेज़बानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
3: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, अध्यक्ष, नेताजी रिसर्च ब्यूरो।
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और तरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने

मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना, वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया, ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था 1942 में, क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, इससे

0: सिंपल एक कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको तीन टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास टूटी, दैट वाज द फोर्स जवान के कदमों के लिए फोर्स आना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन एचबी बराल, हिमहरिप बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
1: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
0: दिस इज द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam barai. This is melody. पहले जो था introduction था, no melody. Kadam kadam barai ja, khushi ke geet gaaye ja, la la la la la la la la la la la la la la la la. This is melody. Now is the brass city. La la la la la. La la.

0: This is the brass duty. This is the josh. This is the josh jawan ke hirday mein lane ke liye, dimag mein lane ke. Then again is a melody. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. This is also melody. Now is it trio. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai kaum ki, kaum pe lutaye ja.
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहाँ रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध

0: समाप्त हुआ, लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस,
1: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945 एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलर अपसर्ज अक्रॉस द होल कंट्री इन सपोर्ट ऑफ नेताजीज सोल्जर्स। And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
0: Captain Ram Singh ki conducting baton ne hazaron dilon ki dhadkanon ko एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
2: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहां तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसरत जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: लिया। जय हिंद भयो कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक

सामान्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ें, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज़ दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of Shubha Sukha Chainaki is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, अहरह तब आह्वान प्रचारित शुनि तब उदार बानी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब पश

0: the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने

0: आज पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा की आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: बॉर्न इंटू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले।

0: Later, he specialized in tappa singing under the guidance of Sri Raghunath Vag of the Gwalior Gharana. Furthermore, under the traditional Guru Shishya Parampara, he received intensive training in Khayal, Dhumri, Natya Sangeet and Bhajans from the Padma Shri recipient Pandit Jitendra Abhisheki.
1: Tansen, Kalidas, Savai Gandharva jaise pratishthit rashtriya samarohon ke saath saath America, Britain aur khaadi deshon mein apni kala ka utkrasht pradarshan karne wale Devle ji Akashwani aur Doordarshan ke ek great kalakar hain. Saath hi aap Sangeet Shiromani aur Vikramaditya jaise kai pratishthit sammanon se alankrit hain.
0: An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Sri Devle has delivered outstanding performances at prestigious national festivals such as the Tansen, Kalidas and Savai Gandharva Festival, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
1: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat राग पूरिया से कर रहे हैं विलंबित ख्याल के बोल हैं प्यारे देगर लागी जो एक ताल में निबद्ध है द्रुत ख्याल के बोल हैं चलो हटो जी छेल काहे रोके गेल जो त्रिताल में है आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर
0: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पूरिया द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी द कंपोजिशन इज सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल अकंपनिंग हिम ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर एंड ऑन द तबला इज उल्लास राजहंस

0: राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनीन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: That was a classical vocal performance by Shri Sudhakar Devle in Raag Puriya. Shri Devle will now present Raag Basanti Kedar, set to Jhaptal with the lyrics Barnin Jai Sakhi, set to Tritaal with the lyrics Meri Basant Ab Ayori.

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: You are just listening to the vocal performance of Shri Sudhakar Devle ji in Raag Basanti Kedar. Shri Sudhakar Devle is concluding his program with Tarana in Raag Hans Dhwani, set to Tritaal with the lyrics Dara Dim Tadare Dani Dim.

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Burgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल

0: The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as the host for the centenary 2030 edition. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन यायर ऐप पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में अपने कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।